तेरे बाप के मैं तो बराबर हूँ, क्या इतनी तुझे तमीज नहीं? मुझसे नजरें

0: You're listening RM-Free Radio. Radio. Radio.
1: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओं, 6:19 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा हाई राइज, साइडीन रोड, गुट ग्रेसी, मौसलमा मेन बोर्ड और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 17 मई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4:00 के बीच, और फिर है ओग्रेटा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मीरा लेन, कामापू लेन नंबर 1, कामापू लेन नंबर 2, कॉन्फिडेल के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, रेजिडेंस ला शापेल और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 17 मई 2026 को सुबह 9:00 से लेकर दोपहर के 2:00 के बीच, और अंत में पायलट के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रघुलेन, रू डे ला बुट के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, लोचुस लेन, इबिस्कुस अ, इबिस्कुस लेन नंबर 3 और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 9:00 से लेकर दिन के 1:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके लाए हैं चंद भाव गीत।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपके लाए हैं एक बहुत ही प्यारा सा भाव गीत फिल्म रफ्तार से लिया गया। वैसे जब हम बात करते हैं सुख दुख के बारे में, सुख और दुख जीवन के दो ऐसे रंग हैं जो हर इंसान की कहानी को पूरा बनाती है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो इंसान संघर्ष और धैर्य का महत्व कभी नहीं समझ पाता। दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें मुस्कुराना सिखाता है। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा भावगीत जो है आप मुकेश के स्वर में सुन पाएंगे। हम आपको इशारा कर दें कि कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। मिलेंगे 7 बजे सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: 6:30 बजे हैं, समय हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन, अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना, ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। विदेश में दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एम्बिशन क्रूज शिप पर लगभग 1700 यात्रियों को पेट संबंधी संक्रमण की आशंका के चलते रोका गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी नेता शी जिनपिंग की आज बीजिंग में उच्च स्तरीय वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर नवीन रामगुलाम और विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध और मजबूत हुए हैं। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉक्टर नवीन रामगुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। औपचारिक बातचीत से आगे बढ़ते हुए दोनों नेताओं ने महाद्वीप के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता तक पहुंच पर साझा रणनीति बनाने की नींव रखी। विस्तार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम नैरोबी स्थित स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ खास मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों तथा मॉरिशस और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।
2: We had a great meeting with the Prime Minister. We appreciate his coming to Nairobi. We appreciate his ideas and insights and his contribution to the success of this Africa Forward Summit. And it provides an opportunity for us to prosecute our position, joint position of Mauritius, Kenya, and the rest of the continent.

0: contextualize our relationship with the rest of the world so that we are better understood and we can drive our interests using the Africa Union, working together, because the situation at the moment requires solidarity.
1: डॉक्टर नवीनराम गुलाम के अनुसार केन्या कई क्षेत्रों में मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खास रूप से व्यापार क्षेत्र में। उन्होंने दोनों देशों के बीच खास संबंधों को भी रेखांकित किया।
2: I want to thank President William Ruto because he's made a wonderful conference. It was very, very positive. As the president said, we need this solidarity. It was a very successful conference and we're moving forward from this. I reminded President Ruto that I first came to Kenya to meet President Jomo Kenyatta with my father, Sir Steve Sagawa. And he sent Tom Mbuya,
0: yes,
2: who was a constitutional lawyer,
0: yes,
2: to help us draft our constitution before independence.
1: बैठक में अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद जारी नैरोबी घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों को अमल में लाने पर ध्यान दिया गया जिनकी घोषणा अफ्रीके महाद्वीप की मजबूती और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। इन दो दिनों के दौरान युवा अफ्रीकी उद्यमियों ने भी सम्मेलन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने इमानुएल माक्रों और विलियम रूटो जैसे नेताओं के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की। सम्मेलन के अंतिम घोषणा पत्र में राष्ट्र नेताओं और सरकारी प्रमुखों ने कई प्राथमिकताओं पर जोर दिया। ऊर्जा अवसंरचना का विकास, डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, अफ्रीकी संसाधनों का स्थानीय स्तर पर अधिक प्रसंस्करण करना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार की भी मांग की गई, क्योंकि नेताओं का मानना है कि अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं अब भी अत्यधिक ऊंची उधारी लागतों से प्रभावित हो रही हैं। खबरों में आगे, मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। 4-9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इस पहल का उद्देश्य एक कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। इसके लिए यूरोपीय संघ और वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया गया। साथ ही सेशल्स, कृषि खाद्य संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को भी मजबूत करने की योजना है। मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल को सुनते हैं, जिनसे बात की शैली नियबन ने विवरण जो है याचना मिश्रा का है।
3: प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख क्षेत्र है बंदरगाह का विकास। मंत्री ने बंकरिंग, ड्राई डॉक और ग्रीन पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया। ये ऐसे समय में किया जा रहा है जब हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में समुद्री यातायात में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार ये भी बताती है कि वह मॉरिशस के मछुआरों को बेहतर समर्थन देना चाहती है, विशेष रूप से अर्ध औद्योगिक और औद्योगिक मछली पकड़ने के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर। इस संबंध में चुना फिशिंग समझौते को लेकर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है। एक और महत्वाकांक्षा यह है कि मॉरिशस को ब्लू कार्बन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया जाए, जिसमें मैंग्रोव और समुद्री विविधता तंत्र शामिल हो जो कार्बन को संग्रहित कर सके, उसको मिटा सके। सरकार इसके अलावा मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती जो कि एक सीवीड है, और दवा तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को विकसित करने की भी योजना बना रही है।
1: काजिनो एम्प्लॉयज यूनियन का कहना है कि मॉरिशस के काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। क्यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस के काजिनो ने सरकार

0: आर्थिक खजाने में लगभग 1.3 बिलियन रुपए टैक्स के रूप में जमा किए हैं। यूनियन के प्रवक्ता शोविन सनासी ने कहा कि ये आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान से अलग हैं। प्रधानमंत्री ने सांसद कविराज रुकनी के एक संसदीय प्रश्न के जवाब में कहा था कि 2015 से 2025 के बीच काजिनो डे मोरिस को कुल 1.9 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। शर्विन सनासी ने यह भी कहा कि काजिनो डे मोरिस में लगभग 500 कर्मचारी हैं और यहां कर्मचारियों की अधिकता नहीं। हालांकि उन्होंने कंपनी के प्रबंधन में कई खामियों की ओर भी इशारा किया। उनको सुनते हैं, विवरण याचना मिश्रा का है।
1: Il y a un paradoxe parce que ça casse 1.3 million là. C'est casino qui peut générer, qui peut introduire dans différents cas de taxes qui est là imposé le man casino.
2: 1.3 बिलियन रुपए की रकम कैसिनो की ही कमाई है जिस पर कई प्रकार के टैक्स लगते हैं। कैसिनो कहीं ना कहीं मुनाफा कर ही रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक ठोस कार्रवाई चलाई जाए समस्या का पता लगाने के लिए। 10-15 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि कैसिनो मुनाफा नहीं कर रहा है और नुकसान होता जा रहा है। 10-15 साल तक कोई समाधान नहीं ढूंढा जा सका कि आखिर समस्या का जड़ क्या है, क्या प्रबंधन जिम्मेदार हैं?
1: Trouver une solution et guetter que ça est vraiment quelque chose qui peut défaillir, est-ce que c'est management?
0: गौरतलब है कि काजिनो डे मोरिस के पास इस समय 3 काजिनो हैं, एक क्यूपिप में, गांबे में और कोडो में। हालांकि कोडो स्थित काजिनो फिलहाल संचालन में नहीं है। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने रविवार 10 मई को पेचित रिवियर में हुई घटनाओं के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत पर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार अधिक कठिन बना रही हैं। निर्मा नारायण रेड्डी, आशी बेचू और याचना मिश्रा।
2: स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए संदेश स्पष्ट है, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है। संघ के अनुसार ऐसे घटनाक्रम पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहे हैं और अब यह पूरी तरह अस्वीकार्य हो चुकी है। डॉक्टर बुज्या कृष्ण देव ने सख्त कानूनों की मांग की है, साथ ही सामूहिक टीमों के लिए आपातकालीन सेवाओं के दौरान बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने भी पुलिस कमिश्नर से अपील की कि चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि वे जनता को सुरक्षित उपचार और सेवाएं दे सकें।
3: Moi, je lance un petit appel au commissaire de police qu'il y prend un stand bien dire contre sa man agression.
2: मैं मांग करता हूं पुलिस कमिश्नर से कि वे ठोस कदम उठाएं। ये अस्वीकार्य है कि कोई व्यक्ति काम पर जाए और जनता से कोई उसके कपड़े ही फाड़ दे। कुछ लोगों पर तलवार से वार भी किया गया है और हमारे पास इसका सबूत भी है। कुछ बदला है, बदलना बाकी है और बदलना ही होगा। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि राधाकृष्ण साध्य ने अस्पतालों में स्टाफ की कमी की ओर ध्यान दिलाया, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम और भी कठिन हो गया है। उनका मानना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने यह भी अपील की कि मंत्री उनके प्रतिनिधियों से मिले और उनकी मांगों को सुने।
4: On a un problème de staff également dans le ministère de la Santé. Il est important, nous renforcer la loi. Vin avec bonne mesure beaucoup plus.
2: कर्मचारियों की भारी कमी है, कानून को ठोस, कदमों को ठोस होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स एक्ट एक पुराना कानून बन चुका है। पुलिस को अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, पुलिस कमिश्नर को कदम उठाना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को श्रमिक संघों की आवाज सुननी होगी।
4: डॉक्टर
2: डॉक्टर और सांसद फहादुर

0: मिया ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हिंसा की घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने हमलावर के खिलाफ नेम एंड शेम यानी नाम और बदनाम करो नीति की सलाह दी है। साथ ही सामी एम्बुलेंस में 24 घंटे पुलिस मौजूदगी, डैशकैम और बॉडी कैम लगाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा बीमा की भी वकालत की। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि सरकार और मैं खुद कोना कोना छान कर आपको ढूंढ निकालेंगे ताकि कानून फैसला सुना सके। ठोस सजा मिलनी चाहिए, नेम एंड शेम होना चाहिए। उन हमलावरों की तस्वीरें डाली जाएं हर जगह पर। सभी सामी और एम्बुलेंस में डैशकैम होना चाहिए ताकि पहचान की जा सके। यदि जरूरत हो तो एम्बुलेंस चालक पर बॉडी कैम भी लगवाया जा सकता है।
1: Pour recorder et identifier si besoin même ambulancier besoin d'un body cam।
0: बढ़ते हमलों को देखते हुए डॉक्टर यूनियन और जिम्मेदार सभी पक्ष तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जनता को सुरक्षित आपात सेवाएं प्राप्त हो पाएं।
2: खबरों में आगे, इंडेंचर्ड लेबर रूट कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडेंचर्ड लेबर रूट प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है जिसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर के गिरमितिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। इस पहल के तहत सुरिनाम, फिजी, ट्रिनिडाड और टोबेगो सहित विभिन्न भारतीय मूल के प्रवासी समुदायों के लिए अभिलेख एकत्र किए जाएंगे। इन दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शोधकर्ता और अपने पूर्वजों की जड़ों की खोज करने वाले लोग इससे का लाभ उठा सकें। इंडेंचर्ड लेबर रूट प्रोजेक्ट की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति की अध्यक्षा फरजाना गुंडर ने कहा कि परियोजना का एक और उद्देश्य गिरमितिया इतिहास से जुड़े पैतृक गांवों का मानचित्र तैयार करना है। उनके अनुसार ये कार्य जटिल जरूर है लेकिन साझा इतिहास और सामूहिक स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनको सुनते हैं उनसे बात की आशी बाचू ने विवरण याचना मिश्रा का।
3: What we're trying to do is to collate all the data from
0: हम डायस्पोरा से सभी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ डिजिटल रूप में उपलब्ध हो। शोध करने वाले वेबसाइट पर जाकर डेटा देख पाएं। जो लोग अपनी जड़ों का पता लगाना चाहते हैं वे भी वेबसाइट पर जाकर अपने गिरमिटिया पूर्वजों के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हम पुराने गांवों का नक्शा भी बनाना चाहते हैं जो इतना आसान भी नहीं है क्योंकि गांवों के नाम बदल गए हैं। हम गिरमिटिया के स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं।
3: And we're going to work more and more in that space as well so that there is a connection not only to the Girmitia who arrived but to where they came from.
2: विदेश की खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग आज गुरुवार को बीजिंग में एक उच्च स्तरीय वार्ता करने जा रहे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच होने वाली इस चर्चा में व्यापार, ईरान और ताइवान के मुद्दों के हावी रहने की उम्मीद है। बुधवार को चीन पहुंचे ट्रंप का बीजिंग में रेड कार्पेट और ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक राजकीय भोज के साथ भव्य स्वागत किया गया। 2017 के बाद लगभग एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन पर चीन में मानवाधिकार आलोचना के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, वे भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चीन पहुंची हैं। और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामले सामने आने के बाद करीब 1700 यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कई यात्रियों में गास्ट्रोएंटेराइटिस जैसे लक्षण पाए गए हैं। एम्बिशन

नाम का ये क्रूज शिप 8 और 9 मई को ब्रिटेन के बेलफास्ट और लिवरपूल से यात्रियों को लेकर फ्रांस और स्पेन की यात्रा पर निकला था। जहाज पर लगभग 50 यात्रियों में तेज पेट खराब होने और उल्टी दस्त जैसे लक्षण देखे गए हैं। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर कुछ तेज हवा पाई जा रही है, आसमान में कुछ बादल भी हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर हल्की बारिश हो सकती है, ऊंचाइयों पर कुछ कोहरे भी छाए रह सकते हैं। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:31 पर, सूर्यास्त होगा 5:41 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और मजबूत। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पॉक विकसित करना। ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर जताई चिंता। और विदेश में दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एम्बिशन क्रूज शिप पर लगभग 1700 यात्रियों को पेट संबंधी संक्रमण की आशंका के चलते रोका गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा चीनी नेता शी जिनपिंग की आज बीजिंग में उच्च स्तरीय वार्ता। 6:52 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कादेर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Ruth Royal, 4 sœurs, mais 69 year old, Shri Gaukaran Jangi, Shri Gaukaran Jangi, जो माओ से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान गुटवायाल कथसे से उठाकर दाह संस्कार के लिए देवखया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मेलविल ग्रांगुब में 66 साल के 66 year old श्री सुनील दत्त पसन जो मिशेल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान मेलविल घोंगुब से उठाकर पहले घोंगुब के सेमिशेल गिरजाघर ले जाई जाएगी। फिर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की स्मशान भूमि फिनरल टुडे एट 2 PM। रामाउटरलेन इजिडोज में 40 साल के 40 year old श्री याविश शर्मा रामाउटर जो याविश से जाने जाते

थे और एमबीसी के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी माँ मित्रानी रामाउटर के मकान रामाउटर लेन इजिडोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए इजिडोज के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 1 PM। तुलसीदास गली क्रैव में 67 साल की 67 year old श्री कमलेश रामजिंग जो बुलमा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती जयंती रामजिंग के मकान तुलसीदास गली क्रैव से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआ मौसाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे टू 1 PM। एवेन्यू फ्लामिंगो आल्बियो में 80 साल की 80 year old श्रीमती सुमंती दिगम जो मैडम निरोध से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान एवेन्यू फ्लामिंगो आल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। नंबर 46B हॉपर रोड ग्लेन पार्क वाकवा में 71 साल की 71 year old श्रीमती लीलावती टोकुर जो अमृता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेटी किरण हिरालुल के मकान नंबर 46B हॉपर रोड ग्लेन पार्क वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। गुटवायाल पुजदे फ्लाक में 75 साल के 75 year old श्री नवींद्र सुनाराम की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:15 बजे इनके मकान गुटवायाल पुजदे फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिमोंग पुजदे फ्लाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15 PM। कौलाबू टेहोज में 89 साल की 89 year old श्रीमती बिडवंती नोहर पैदाइश नाम रघुनाथ जो मोहबिया क्वाफिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू टेहोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशा त्यागोज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लातापी रोड ब्रिजे वैद्य में 77 साल की 77 year old श्रीमती तारामती लौटन पैदाइश नाम जगरूप जो तारा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान लातापी रोड ब्रिजे वैद्य से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गुटवायाल इसकालिये में 80 साल की 80 year old श्री परमानंद्र उचाना जो रामोती से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे श्री संजीव उचाना के मकान गुटवायाल इसकालिये से उठाकर दाह अंतिम संस्कार के लिए लासूजिन लिस्कालिये की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। अविनी आजाली मोसेलमोस सैन जॉन काट्रोबोन में 75 साल के 75 year old श्री क्रिश्चंद सुबनोथ जो इंदर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान अविनी आजाली मोसेलमोस सैन जॉन काट्रोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सुल्फेरिनो नंबर 2 वाकवा में 68 साल की 68 year old श्रीमती धनमांटी फुगू पैदाइश

0: भंटुआ जो धनमांती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके दामाद श्री उमेश दसुया के मकान सुल्फेगिनो नंबर 2 बाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए बालों सुल्फेगिनो नंबर 5 बाकुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 10 AM। कालीमाई रोड बाउलो में 73 साल की 73-year-old कुमारी भूमावती गुरवादू जो दमन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। ये टेम्पल रोड बेल्वी मोहल रहती थी। अर्थी जो हैं श्री दिनेश शंकर गुरवाडू के मकान कालीमाई रोड बाउलू से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्रिमेशन रोड पीटों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 10 AM। ऋषि दयानंद गली ख्वाबुचिक में 75 साल की 75-year-old श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाशी नाम ओखेज जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके पति श्री देवनारायण मोहन के मकान श्री देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद गली ठुआबुचिक से उठाकर दाह संस्कार के लिए ठुआबुचिक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 11 AM। प्रोविडेंस रोड पर फ्लैक में 57 साल के 57-year-old श्री धुरंद्रनाथ जीवन जो संजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके बेटे श्री अनिकेत जीवन के मकान प्रोविडेंस रोड पर फ्लैक से उठाकर दाह अंतिम संस्कार के लिए पुस्ते फ्लैक आली मांग की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 11:30 AM। बुआशेरी रोड मौका में 69 साल के 69-year-old श्री दयानंद अकुल जो ज्ञानदेव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान बुआशेरी रोड मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 1 PM। महात्मा गांधी रोड पेटी गाफ्रे में 88 साल की 88-year-old श्रीमती शांति भोलू पैदाइशी नाम रामदवा जो रेबे से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे श्री विकी भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पे चिकाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कापमालोगे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग टाइटल कौन जीतेगा, सस्पेंस अंत तक जाएगा लगता है। मैनचेस्टर सिटी हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए अंत तक लड़ेगा, इतनी आसानी से आर्सेनल को टाइटल उड़ा ले जाने नहीं देगा। पेप ग्वार्डियोला की टीम तैयार है चैलेंज करने के लिए। टाइटल होप्स अलाइव, क्योंकि कल फिल फोडेन के 2 लाजवाब असिस्ट एक बैक हील पास पर अंतुआन सेमेन्यो का गोल, फिर फर्स्ट हाफ में ही ओबा मामूज का गोल और साविनो ने सिटी के गोल डिफरेंस को बेहतर बनाया 3रा गोल स्कोर करके। मैनचेस्टर सिटी 3 क्रिस्टल पैलेस 0। दोनों टीमों के दिमाग में आने वाले फाइनल्स हैं। सिटी एफ ए कप का फाइनल खेलेगा चेल्सी के खिलाफ इस शनिवार को यानी परसों, और क्रिस्टल पैलेस, उसके लिए प्रीमियर लीग से कुछ लेना देना नहीं है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में है, इसीलिए वो उसकी तैयारी में है। ऐसे में

दोनों टीमों में काफी बदलाव लाए गए, कई खिलाड़ियों को आराम पर रखा गया। इस जीत से मैनचेस्टर सिटी अब लीग लीडर आर्सेनल से केवल 2 अंक पीछे हैं। बराबर मैच बचे हैं केवल 2 मैच दोनों टीमों के लिए। इस सोमवार को, इस मंडे को आर्सेनल बर्नले का स्वागत करेगा, फिर अगले दिन बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और सीजन का आखिरी दिन द फिनाले संडे 24 मई को क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला। देखा जाए तो सिटी के लिए मामला थोड़ा टाइट है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहला मैच बोर्नमुथ के खिलाफ, बोर्नमुथ भी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन या यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन चैलेंजर है। यही बात एस्टन विला के साथ भी है। आर्सेनल के सामने होंगी 2 ऐसी टीमें जिनके लिए प्रीमियर लीग में कुछ बचा नहीं है। बर्नले तो भस्म हो गया, जबकि क्रिस्टल पैलेस के दिमाग में कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल होगा, जिसे जीतकर वो यूरोपा लीग में आ सकता है। पर अभी सिटी का गोल डिफरेंस 1 गोल से बेहतर है। कल फ्राइडे नाइट मैच, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन वाला मैच होगा, एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल। दोनों के पास बराबर अंक हैं, यानी 59.68 अंक। लिवरपूल गोल डिफरेंस पर आगे हैं। जो जीतेगा चैंपियंस लीग में जाएगा। ड्रॉ हुआ तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्नमुथ केवल 4 अंक पीछे हैं, ब्राइटन 6 अंक पीछे। सो कल जो जीतेगा वही सिकंदर चैंपियंस लीग टिकट जेब के अंदर। स्कॉटिश प्रीमियरशिप का निर्णय फाइनल डे मामला हो गया है। कल हार्ट्स और सेल्टिक दोनों जीत पाए। हार्ट्स ने 3-0 से फाल्कर्क को हराया, जबकि सेल्टिक जीत पाया कठिनाई के साथ 3-2 से मदरवेल के खिलाफ। विनिंग गोल एक ड्रामेटिक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद पेनाल्टी पर रहा, इंजुरी टाइम के आखिरी सेकंड में। सेल्टिक केवल 1 अंक पीछे हैं। आखिरी मैच टाइटल डिसाइडर होगा सेल्टिक वर्सेस हार्ट्स सेल्टिक पार्क में। वैसे कल रेंजर्स फिर से हार गया। लीग वन प्रमोशन प्ले ऑफ में स्टॉकपोर्ट 2-0 से स्टेवेनेज को हरा पाया। स्पेन के लालीगा में चैंपियन बार्सिलोना हॉलीडे मूड में है। अलावेज ने बार्सिलोना को 1-0 से हराया। इस्पानियल 2 एथलेटिक बिलबाओ 0, विलारियल 2 सेविला 3, अलावेज 1 बार्सिलोना 0, रेताफे 3 मालोका 1। कोपा इटालिया जीत गया इंटर मिलान। फाइनल में इंटर मिलान ने लाजियो को 2-0 से हराया। इंटर मिलान के लिए सेरी अ और कोपा इटालिया डबल से मिलन। फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन अब आराम से ठंडे दिमाग से चैंपियंस लीग फाइनल की तैयारी कर सकता है। टाइटल चैलेंजर लांस को 2-0 से हराकर पेरिस सेंट जर्मेन फिर से चैंपियन बना। बारात्खेलिया और एम्बाए का 1-1 गोल। बचा है केवल 1 मैच। पेरिस सेंट जर्मेन 7 अंक आगे हैं। अब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए ब्रिंग ऑन आर्सेनल। वैसे दूसरे मैच में ब्रेस्ट की हार हुई, स्ट्रासबर्ग ने उसे 2-1 से हराया। योजे मोरिनो द स्पेशल वन रियल मैड्रिड में वापस आ रहा है। बातचीत एडवांस स्टेज पर है। हमेशा की तरह मोरिनो अपना पे पैकेज बहुत बारीकी से निगोशिएट करता है, खासकर साकर किए जाने पर कॉम्पेंसेशन को लेकर। न्यूकासल यूनाइटेड का एंटोनी गोर्डन बायर्न म्यूनिख में जाने के लिए राजी हो गया। अब 2 क्लबों के बीच निगोशिएशंस हो रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट के इंटरनेशनल मिडफील्डर एलियट एंडरसन के लिए फॉर्मल मूव करने के लिए तैयार हैं। इधर माइकल कैरिक को परमानेंट बॉस बनाने के लिए जो उसे करना था वैसे उसने तो कर दिया। अब क्लब के सीनियर अधिकारी, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उसको स्थायी परमानेंट मैनेजर बनाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं मालिक सर जिम रैटक्लिफ से। टेनिस में इटालियन ओपन में इगा श्वातेक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। कल आसानी से श्वातेक ने पेगुला को 6-1 6-2 से रफा दफा किया। वितोलिना ने रिबाकीना को हराया। लड़कों में कास्पर रूड सेमीफाइनल में गया काशानोव को हराकर। स्पेन का युवा खिलाड़ी जोडा हार गया, इस बार दादेरी के खिलाफ। आज सीनर रूबलेव ये क्वार्टर फाइनल है। सीएसटीए गोफ ये सेमीफाइनल। लंदालुश मेडवेदेव क्वार्टर फाइनल और श्वातेक वितोलिना सेमीफाइनल। क्रिकेट, विराट कोहली की ओर से सेंचुरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। 60

0: ball, 60 ball, 105 not out, vintage effort. पिछले दो मैचों में कोहली डक आउट हुआ था जीरो पर आउट, पर इस बार जीरो के अगल बगल में एक और पांच, मतलब 105 नॉट आउट। कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पोररी लेकिन क्लास इज परमानेंट, ऐसा कोहली के लिए लागू हुआ। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 16 अंक के साथ अभी आगे हैं। गुजरात टाइटंस के पास भी 16 अंक हैं 12 मैचों के बाद। फिर सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 13 अंक हैं उनके पास, चेन्नई सुपर किंग्स 12, राजस्थान रॉयल्स 12। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अंत में एथलेटिक्स के अफ्रीकन चैंपियनशिप में नोआ बीबी 100 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। अक्रा गाना में सेमीफाइनल में नोआ बीबी 8वें स्थान पे आया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। फिर से बता दें, आपको याद दिला दें, क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराकर मैनचेस्टर सिटी ने ऐलान किया है कि आर्सेनल को इतनी आसानी से टाइटल जीतने नहीं देंगे, लड़ेंगे अंत तक, मरते दम तक। नमस्कार, शुभ दिन।
1: KHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: Quand les petits bébés, Moticone Prothèse Li compte tout kitsuse. Mais Astella donne les mondes digital, mot pas toujours connu au kissan la lipégosé ou soit qui lipégété. Heureusement, Moriches Telecom et Nam IT Protec est une solution pour prothèse aux enfants quand les online. Zodi, quand les le sopotable ou l'on se tablette, mot l'esprit tranquille à cause sécurité aux enfants, peine à prix. Un enfant sans protection sur les réseaux peut être exposé à des dangers bien réels. Cyberbullying, des contenus violents, entre autres. Protégez votre enfant aujourd'hui avec Mighty Protect. Pour plus d'infos, appelez le 8900 ou visitez notre page mighty.mu.
3: Mighty? Mighty, c'est ça!
4: Ministry of Labour and Industrial Relations और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो ट्रावाय नो लावेनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सिकते में डीना आराबी बेकरी लिमिटेड जो रॉयल रोड मेजिन कॉन्डमास्क में पावल जाला, दू गो मेल बेकरी ऑपरेटर्स खोजता जिनकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइए न तो टेलीफोन करिए 7705164। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 21 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेधी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जिन रॉयल रोड बेल्विमोरल में पावल जाला, एगो मेल पेस्ट्री मेकर खोजता जेकर ऐसी बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई दिया गल पता पर विदा कर दी है patbrioche2@gmail.com। जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोन करिए 412-91-17 न तो 7-91-57-55। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में डी क्राफ्ट एंटरप्राइज लिमिटेड जिन मामजल जान गुडलैंड में पावल जाला, 3 मेल सुविंग मशीन ऑपरेटर्स खोजता जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे, साथ में 2 गो मेल स्क्रीन प्रिंटिंग ऑपरेटर्स जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिए 52 50 20 43 न तो अपन सीवी ईमेल द्वारा दिया गल पता पर विदा कर दी है, माने कि dcraft0211@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सिक्ते में तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जन बेले रिविया सेश में पावल जाला, 3 मेल ग्रेड 1 कारपेंटर्स खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइए न तो टेलीफोन करिए 52 55 23 03। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 माने की 30 मई 2026। टूरिज्म के सेक्टर में शुगर वर्ल्ड लिमिटेड जन बोप्लॉ पॉम्पलेमुसेस में पावल जाला, एगो फीमेल क्लीनर खोजता जेकर 1 से 2 बरिस

0: के रहने वाले निवासों को, जिनमें है NSLD, NHDC, चर्च लेन, डसन स्ट्रीट, एवेन्यू अजेलिया, हाई स्ट्रीट, बिल्बाओ स्ट्रीट और कमिलिया एवेन्यू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह के 8:45 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है रोशब्रुन के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू रोशब्रुन के कुछ भागों में, एवेन्यू एस के चेदी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच, जुब्रे के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है कॉम्बुलेल और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच, कॉमौसले और तत्कोको के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 15 मई 2026 को सुबह के 8:45 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा हाई राइज, साइट इन रोड, रूट ग्रेसी, मौसल मोमन बोर्ड और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 17 मई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, ओरिएटा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मिरालेन, कॉमापुलेन नंबर 1, कॉमापुलेन नंबर 2, कॉन्फिडेल के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, रेजिडेंस ला शापेल और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 17 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच। और अंत में पायुट के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रगुलेन, रू दे ला बोंते, लोचुस लेन, इबिस्कुस लेन नंबर 3 और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञापन सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस। दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। सुबह 6 बजे से श्रोताओं, इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। वैसे ये सफ़र जो है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपके साथ निभाने वाले हैं। गुरुवार का दिन है आज 14 मई 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। सुबह का नजराना कार्यक्रम आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। वैसे आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हम यही कामना करते हैं। कहते कि हैं कि हर दिन को बोझ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझकर जीना चाहिए। तो चलिए इसी सोच के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ डॉक्टर जमन जी की प्रस्तुति में।
2: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
3: हम अपने बारे में जो दृढ़ चिंतन करते हैं, जिन विचारों में संलग्न रहते हैं, क्रमशः वैसे ही बनते जाते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज चुके हैं। हम आपको बताते चले हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज आप लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आए हैं, इस समय आप सुन सकेंगे सुबह का नजाना कार्यक्रम, चंद पुराने गाने। साथ में आप 8 बजे भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे और इसके बाद आपके लिए चंद डुएट्स गाने। हमारी धरोहरीय कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में 8:50 पर और साथ ही साथ एक भोजपुरी गीत आप सुन पाएंगे। 9 बजे आप समाचार जो है फिर से एक बार सुन पाएंगे और इसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। 10 बजे समाचार पढ़े जाएंगे, भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है समाचारों के बाद। 11 बजे आप एक बार फिर से समाचार सुन सकेंगे, इसके बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। दिन के 12 बजे गिरिशानी लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। तमिल भाषा में कार्यक्रम दिन के 12:30 बजे। 1:30 बजे आप विविधा कार्यक्रम सुन सकेंगे, ये कार्यक्रम मराठी भाषा में प्रीति की प्रस्तुति में। जिन लेकर आएगी मंडारिन में कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे। 2:30 बजे रंगारंग, ये कार्यक्रम गुजराती भाषा में अमिता की प्रस्तुति में। आपकी पसंद कार्यक्रम 2:45 पर, ये कार्यक्रम रत्ना के साथ। दोपहर के 3 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा समाचारों के बाद। शाम के 4 बजे आप सुमिता के साथ भक्ति सागर कार्यक्रम सुन पाएंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा कार्यक्रम होने वाला है और ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे। चंद सदाबहार गीत शाम के 5 बजे पूनम के साथ। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आपके लिए, इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दाविद के साथ और रात्रि के 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम युवा रसायन की प्रस्तुति में। तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ 7:30 बजे। 7:50 पर शीर्ष के साथ आप मराठी भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। भजरे प्रभु का नाम, ये कार्यक्रम देविना के साथ। महफिल शब समीर के साथ 8:40 पर। रात्रि के 9 बजे भोजपुरी तड़का किरण के साथ और साथ ही साथ रात के 11 बजे गिनीशाली कराएगी सुनहरे पल, चंद पुराने गाने। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत।
1: झलकियां
2: झलकियां
1: KHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

यही कहेंगा चाहेंगे आपसे श्रोताओं की दिन की शुरुआत जो है अच्छे विचार और सकारात्मक मन से करें। सुबह का जो शांत समय है मन को ऊर्जा प्रदान करता है। थोड़ा समय भगवान, प्रकृति या अपनी पसंद की चीज़ों को निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे दिन जो है और भी सुंदर बन जाता है। 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। तो चलिए आप ये चंद सदाबहार गीत और ये अगला गीत जो है किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

0: अरे नंदू बाबू आओ आओ आओ। अरे मारा पाँव कट गया।
1: कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूना लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा।
0: नहीं नहीं अभी दवाई
1: लगा। अरे अरे नंदू
0: नंदू रहने दो नंदू।
1: ये तू क्या कर रहा है पगले?

0: मेरे लिए तो दवा लाया, पट्टी बांधी तूने।
1: तो क्या हुआ?
0: क्या हुआ वो तू नहीं समझेगा। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम लोग क्या आज ही चले जाओगे?
1: हाँ थोड़ी देर में, बाबा गाड़ी लेने गए हैं।
0: फिर तू कभी नहीं मिलेगा?
1: क्यों नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा और अपना तालीस भी ले जाऊंगा, संभाल के रखना।
0: हाँ बेटा मैं जरूर रखूंगी।
1: अच्छा मैं जाता हूँ।
0: अच्छा जा बेटा।
2: अरे ये क्या, तो ब्राह्मण का बेटा होकर मेरे पैर छूता है?
1: तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा तो किसको करूंगा?
0: जा बेटा, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे।

चलिए श्रोताओ, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बस हमें इन सब से दूर रहना चाहिए और यही हमारे लिए बेहतर है। और यही सलाह देंगे कि जीवन में हमें मुस्कुराना चाहिए, अपनों से प्यार करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। कहते हैं प्यार बांटने से प्यार और बढ़ता है। छोटी छोटी खुशियां जो है महसूस करना चाहिए और ये सब जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। दो पल की ज़िंदगी है, हंस के हमें जीना चाहिए और हर पल को हमें कीमती बनाना चाहिए। तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके लिए चंद सदाबहार गीत।

श्रोताओं, खासियत इन पुराने गीतों का ये है कि वे सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं। संगीत जो है समय का मोहताज नहीं होता, वह हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना ही लेता है। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत कारवा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। 7:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में।

चलिए श्रोताओं, हम आपसे यही कहेंगे, दिन ऐसा बिताइए कि रात को सोते समय मन में संतोष हो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। किसी की मदद, एक अच्छी बात या एक प्यारी मुस्कान दिन को खास बना सकती है। तो चलिए, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं भोजपुरी में, आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस मिलेंगे सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर। आप सभी को शुभ दिन।

8 बजल बा पेश बा भोजपुरी समाचार। नमस्ते, डॉक्टर नवीन रामगुलाम और विलियम हुटो के बीच मुलाकात संगे मॉरिशस और केन्या के संबंध और भी मजबूत होलबा। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो संगे एगो महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक लगेलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार यात्रा खाली औपचारिकता नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध के गहराई के दर्शावेला जेकरा ओ एगो नवा स्तर तक ले जाए चाहत हमन। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो मॉरिशस के नेतृत्व के सराहना करलन। वो अफ्रीका फोरम सम्मेलन के सफलता में डॉक्टर नवीन रामगुलाम के योगदान के खुलकर प्रशंसा करलन। औपचारिक बातचीत के आगे बढ़ा के दोनों नेता महाद्वीप के सामने मौजूद प्रमुख चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता तक पहुंच पर साझा रणनीति बनाए के नींव रखन जा। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्ष के संयुक्त घोषणा संगे होल जेकर में ऊर्जा डिजिटल विकास रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर देवल गल। मॉरिशस के लक्ष्य इलाका के सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करे के है। 4 और 9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़ल कई गो परियोजना के रूपरेखा तैयार करल गल। ये पहल के मकसद एगो कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करे के है। इकर खातिर यूरोपीय संघ और विश्व बैंक के सहयोग लेवल जाए साथ ही सेशल्स कृषि खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग के और भी मजबूत करे के योजना बाती। काजिनो एम्प्लॉयज यूनियन इबलेबा के मॉरिशस के काजिनो के निजीकरण को समाधान नहीं है। यूनियन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम संघ एगो बैठक के मांग कर लेबा। क्यूपी में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन बुल्लक के गल 5 बरिस में मॉरिशस के काजिनो सरकार के खजाना में लगभग 1.3 बिलियन रुपया टैक्स के रूप में जमा कर ले बाते। यूनियन के प्रवक्ता शर्विन सनासी बुल्लन की ये आंकड़ा प्रधानमंत्री द्वारा संसद में देवल गल बयान से अलग है। प्रधानमंत्री सांसद कवि राजे रुकनी के एगो संसदीय प्रश्न के जवाब में बोले रहलन कि 2015 से 2025 के बीच काजिनो मॉरिशस के कुल 1.9 बिलियन रुपया के नुकसान होलबा। शर्विन सनासी ये भी बोलन कि काजिनो मॉरिशस में लगभग 500 कर्मचारी बाते और हो जा कर्मचारी के अधिकता नहीं बा। हालांकि वो कंपनी के प्रबंधन में कयन गो खामी की ओर ध्यान भी आकर्षित करलन। गौरतलब है कि काजिनो मॉरिशस के पास इस समय 3 गो काजिनो बाते क्यूपेप गांव बे और इकोडो में। हालांकि कोडन स्थित काजिनो फिलहाल संचालन में नहीं बाती। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन रविवार 10 मई के पेचित रिविया में होल घटना के बाद एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेलग। एगो गंभीर सड़क दुर्घटना में एगो मोटरसाइकिल चालक की मौका पर ही मौत हो गल। यूनियन जनता के कुछ लोगन द्वारा चिकित्सा कर्मी और आपातकालीन टीम के प्रति बढ़ल आक्रामकता पर चिंता जतेलग। डॉक्टर के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराए धमकाए की घटना उलो के बचाव और उपचार कार्य के लगातार जस्ती कठिन बनावट बाती। इंडेंशन लिबरूट कॉन्फ्रेंस पर आधारित एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित करल जा रहा। इस सम्मेलन इंडेंशन लिबरूट प्रोजेक्ट के एगो प्रमुख पहल से जुड़ल है जेकर सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। ये परियोजना

के मकसद दुनिया भर के गिरमिट या मजदूर से संबंधित एगो विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करे के हा। ये पहल के तहत सुरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाद एंड टोबेगो सहित विभिन्न भारतीय मूल के प्रवासी समुदाय के अभिलेख एकत्र करल जाए, ये दस्तावेज के ऑनलाइन उपलब्ध करावल जाए, जिमें शोधकर्ता अपन पूर्वज के जड़ के खोज करे होला लोग एकर लाभ उठा सकें जा। इंडन चडले बड़ूट प्रोजेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति के अध्यक्षा फरजना गाउंडर बुल्लन की परियोजना के एगो उद्देश्य गिरमिट इतिहास से जुड़ल पैतृक गांव के नक्शा तैयार करे के है। उनका अनुसार ये कार्य जटिल जरूर है, बके साझा इतिहास और सामूहिक स्मृति के पुनर्जीवित करे खातिर ये बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश में शी जिनपिंग बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगे महत्वपूर्ण वार्ता से अक्टे बुल्लन कि चीन और अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हो के चाहें। शी जिनपिंग बुल्लन की दोनों देशन के सहयोग से लाभ हो और टकराव से नुकसान। एक जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग के महान नेता बतैलन और बुल्लन की दोनों महाशक्ति के बीच संबंध अक्टे से भी बेहतर हो इस शिखर वार्ता के बेहद महत्वपूर्ण बतैलन। बीजिंग में हो रहल ये बैठक में व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान प्रतिबंध और ईरान से जुड़ल मुद्दा पर चर्चा हो के उम्मीद बाते। कई अनगो बड़ा अमेरिकी उद्योगपति और टेक कंपनी के प्रमुख भी इस दौरा में शामिल होवन जा, जेकर से बैठक के आर्थिक महत्व भी बढ़ गल बा। और तलब के काल चीन पहुँचल ट्रंप के बीजिंग में रेड कार्पेट और ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एगो राजकीय भोज संगे भव्य स्वागत करल गल। 2017 के बाद से लगभग एक दशक में कोनो अमेरिकी राष्ट्रपति के ये पहला चीन यात्रा है। और ये दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एगो क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामला सामने आयला के बाद करीब 1700 यात्री के जहाज पर ही रोक देवल गल। अधिकारी के मुताबिक कई अनगो यात्री में गास्ट्रो एंटेराइटिस जैसे लक्षण पाल गल बा। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Route Royale 4 sœurs mais Route Royale 4 sœurs mais on a été baris qui 69 ans qui Shri Gokaran Jangi Shri Gokaran Jangi jinkara log mau se janet ralanja ki mrityu ho galwa arthi aaj din ke dubai chain kar patni Shrimati Punauti Jangi ke makan Route Royale 4 sœurs se utha kar da sanskar khatir difraya ke smashan bhumi le jal jaye Rasoilin, 20 pieds, road triolet, mais Tia Sertabariski, 66 ans, qui Jenab Aboubakar Niamat, Jenab Aboubakar Niamat, Jinkaralog Ashik Sejanet Ralinja, Intekal Kergalhuan, Jenaza Jdinke Dubachke Adhan Kermakan, Rasoilin, 20 pieds, road triolet, se Nikalke, Defnawi Khatid, plein de papai ke Kabrestan Nijaljai. महात्मा गांधी गली पचीरा फ्रे में 88 बरिस के 88 ओं के श्रीमती शांति भोलू पैराशिनाम रामदेवर जिनकरा लोग रेबी से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन की डूबच के आधा इनकर बेटा विकी भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पचीरा फ्रे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कापमालियों के शमशान भूमि ले जल जाए बॉशेरी रोड मोका में 69 बरिस के 69 ओं के श्री दयानंद उकुल जिनका लोग ज्ञानदेव से जानित रलिंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान बॉशेरी रोड मोका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिया कॉन्स्टेंस है पिये की शमशान भूमि ले जाल जाए प्रोविडेंस रोड पुज दे फ्लाक में 57 बरिस के सेकंड सीटों के श्री दुरेंद्र नाथ जीवन श्री

इंद्रनाथ जीवन जिनकरा लोग संजयी से जानित रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बज के आधान कर बेटा श्री अनिकेत जीवन के मकान पोविडाउंस रोड पजदे फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आले मांगो पजदे फ्लाक के शमशान भूमि ले जाल जाए। ऋषि दयानंद गली स्वाबुचिक में 75 साल के संस्कैजों के श्रीमती जयवंती ओबिलक श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाइश नाम ओखेज जिनकरा लोग माला से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर पति श्री देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद गली ठुआबुचिक से उठा के दाह संस्कार खाते ठुआबुचिक के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। कालीमाई गली बाउलो में 73 बरिस के स्वसंथेजों के श्रीमती बल्कि कुमारी भूमावती गुरुवाडू कुमारी भूमावती गुरुवाडू जिनकरा लोग दमन से जानत रलंजा और जिनकी अक्ति टेम्पल रोड बेलवी मोगल रहत रलन के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे कालीमाई इनकर इनकर भांजा दिनेश्वर शंकर गुरुवाडू के मकान कालीमाई रोड बाउलो से उठा के दाह संस्कार खातिर क्रमेशन रोड पीटों के शमशान भूमि ले जल जाए। सिल्फिनो नंबर 2 वाकुआ में 68 बरिस के स्वासों के श्रीमती धनमंती फोगू श्रीमती धनमंती फोगू पैदाइशी नाम भंटुआ जिनकरा लोग धनमंती से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर दामाद श्री उमेश दसोया के मकान सुल्फिनो नंबर 2 वाकुआ से उठा के दास संस्कार खातिर बालांस सुल्फिनो नंबर 5 वाकुआ के शमशान भूमि ले जल जाए। अविनी आजाली मौसलमों सेंट जॉन कैट्रोबोन में 75 बरिस के श्वसन कैजों के श्री क्रिश्चंद सुबनोथ श्री क्रिश्चंद सुबनोथ जिनकरा लोग इंदर से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बज के आधा इनकर मकान अविनी आजाली मौसलमों सेंट जॉन कैट्रोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। उठवायाल इसकालिये में 80 बरिस के कैथोवैजों के श्री परमानंद्र अचाना श्री परमानंद्र अचाना जिनकरा लोग रामोती से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर बेटा श्री संजीव अचाना के मकान उठवायाल इसकालिये से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लासोजिन इसकालिये के शमशान भूमि ले जाल जाए। लातापी रोड ब्रिजवैद्या में 77 बरिस के स्वसंजी से तो के श्रीमती तारामती लौटन श्रीमती तारामती लौटन पैदाइश नाम जगरूप जिनकरा लोग तारा से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान लातापी रोड ब्रिजवैद्या से उठा के दाह संस्कार खातिर मेजीन कौदे मास्क के शमशान भूमि ले जाल जाए। कौलाबू टेहोज में 89 बरिस के कैथोवेनेवों के श्रीमती बिदवंती नोहर श्रीमती बिदवंती नोहर पैदाइश नाम रघुनाथ जिनकरा लोग मोहबिया क्वाफिया से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू टेहोज से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौसम टेहोज के शमशान भूमि ले जाल जाए। उठवायाल पुलते फ्लाक में 75 बरिस के श्वसन कैदों के श्री नवींद्र सुनाराम श्री नवींद्र सुनाराम जिनकरा लोग विनोद से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बज के 15 मिनट पर इनकर मकान उठवायाल पुलते फ्लाक से उठा के दाह संस्कार खातिर आले मांग पुलते फ्लाक के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 46B गांवपाव रोड ग्लैन पार्क बाकुआ में 71 बरिस के स्वसंतों के श्रीमती लीलावती टुकुर श्रीमती लीलावती टुकुर जिनकरा लोग अमृता से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बज के आधान कर बेटी किरण हीरालोल के मकान नंबर 46B गांवपाव रोड ग्लैन पार्क बाकुआ

पासे उठा के दाह संस्कार खातिर ठुआमा मेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। अविनी फ्लामिंगो आल्बियो में 80 बरिस के कैथोवैजों के श्रीमती सुमंती दिगम, श्रीमती सुमंती दिगम जिनका लोग माराम निरोज से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर मकान अविनी फ्लामिंगो आल्बियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। तुलसीदास गली खैव में 67 बरिस के स्वासन सेतों के श्री कमलेश राम जिंग जिनका लोग बुलमा से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के एक बजे इनकर पत्नी श्रीमती जयंती राम जिंग के मकान तुलसीदास रोड खैव से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौसा के शमशान भूमि ले जाल जाए। रामाउटर लेन इजी दोज में 40 बरिस के काहोतों के श्री यावीश शर्मा रामाउटार जिनका लोग यावीश से जानत रलंजा और जिनकी अक्ति एमबीसी के कर्मचारी रहलन की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1:00 इनकर माँ श्रीमती मित्रानी रामाउटार के मकान रामाउटार लेन इजिडोज से उठा के दाह संस्कार खातिर इजिडोज के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। मेलविल घोगुब में 66 बरिस के स्वासन सीजों के श्री सुनील दत्त पौसान जिनका लोग मिशेल से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान मेलविल घोगुब से उठा के अक्ते घोगुब के गिरजाघर सेमिशेल ले जाल जाए। फिर अंतिम संस्कार खातिर घोगुब के ही शमशान भूमि। तशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के दिल हमदर्दी बातें।

चलिए श्रोताओं, 8:22 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, इस समय से लेकर 8:50 पर आपकी ये राय है चंद डुएट्स गाने, और पहली डुएट्स जो है आप बहुत ही पसंद करने वाले हैं, और पुरानी फिल्म हीरा पन्ना से लिया गया ये प्यारी सी जो डुएट आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ।

श्रोताओं, हीरा पन्ना का ये गीत आज भी चमकते हुए एहसास लगते हैं। इस गीत में प्यार, अपनापन और जीवन की कोमल भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब जो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म प्रेम नगर का ये सदाबहार गीत, आप इसे बेहद ही पसंद करने वाली है।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत। इंसान जो है अपने साथ केवल अपने कर्म और यादों को लेकर जाता है, दौलत महल और शौहरत सब यही रह जाती है। तो चलिए श्रोताओं, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रख रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आराधना से लिया गया। ये गीत जो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

श्रोताओं, कई बार दिल भी कोरे कागज जैसा होता है, जिस पर यादें, रिश्ते और भावनाएं धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ जाती हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं चंद ड्यूएट्स गाने। 8:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और प्यारा सा गीत आपके लिए, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय आप सुन रहे हैं, और आपको पता है प्यार में रोटने मनाने का जो मज़ा है कुछ और ही है। तो गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे आगे बढ़ाएंगे। अगला गाना जो है फिल्म फरेब से लिया गया, उदित नारायण और अभिजीत की आवाज़ों में।

प्यार का मिलना कोई संयोग भी हो सकता है, लेकिन उसे निभाना मेहनत, विश्वास और समझ से होता है। जहाँ भरोसा होता है वहाँ रिश्ता और गहरा हो जाता है। श्रोताओं, तो चलिए एक अंतिम नजाना आपके लिए। वैसे काफ़ी लोग जो है सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीला रामस्वामी जी है, उनके सभी बच्चों के लिए अगला गीत, विश्वानी डुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में है हमारे साथ लक्ष्मी तिलक धारे जी जो अपना जन्मदिन मना रही है। शुभकामनाएं जो है पति ज्ञान की तरफ से, उनकी बेटी है दिया, बेटा है नीलेश, बहू दीक्षा, नाती अरव, आयान कवि, युवराज, कृष्टि, रानी और उनकी छोटी सी नातिन है चेस्विका। तुलसी परिवार है मौरारबिया के रहने वाले। हमारे साथ माला सुमारू जी है, साथ में उनके पति सूर्यदेव जी। गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, साथ में है अनिता जी है, आप पिछवेजे सैपिया की रहने वाली, साथ में है राधा जी सैपिया की रहने वाली। त्रिवेदी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, उनके पति अनिल है, सभी मोहन परिवार है, साथ में केश जी है, साथ में उनके सभी बच्चों के लिए और उनके पति है अनिल जी। तो चलिए इन सभी लोगों के लिए ये अंतिम नजाना इस कार्यक्रम का।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: चलिए श्रोताओं अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। किरण जानकी की प्रस्तुति में हमारी धरोहर कार्यक्रम आपके लिए।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हम इस दुनिया के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत पर बातचीत करब, ग्लासिये पर आज बतियाब जा। ग्लासिये यानी हिमखंड या फिर बर्फ के बड़ा चौड़ा चट्टान। ग्लासिये पृथ्वी पर जीवन के कायम रखे में एगो बहुत ही बड़ा भूमिका निभावेला। पहला तो दुनिया के आधा मानवतावाद के पिए के पानी के आपूर्ति ई सब ग्लासिये से ही होवेला। और फिर कितने ग्लासिये होला इलाका में रहे होला स्थानीय समुदाय खातिर ई ग्लासिये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़ल है। और ग्लासिये हमने जो इलाका में रहिला सा हुआ पर आपके दिखे के नहीं मिली, जो नॉर्थ पोल्स बा जो पॉलर देश बा हुआ पर सकबा ई सब देखे। और उस सब देश में ग्लासिये के आज जब देखबा ई सब जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्री में भी सकी मिले, तो देखबा कि हमने के पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव बा वो बहुत तेज़ी से पड़ा था। आज हमने हियाँ बैठ के कितने बातचीत से कब्जा करे, जब देखत है जाके कहियो जस्ती ठंडा लगता कहियो जस्ती गर्म, तो हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करी ला जा। लेकिन उस सब देश में जब जाइबा जहाँ पर ग्लासिये है, तो आपके

0: एकदम सीधा रूप से नजर आए कैसे ये सब बड़ा बड़ा हिम के चट्टान, ये बर्फ के चट्टान पिघल ले जाता, विश्व के तापमान बढ़ ले जाता, सब कोई जाना था ऐसा। लेकिन ये बढ़ता तापमान और गर्मी के सबसे बदतर प्रमाण तेजी से पिघलता ये सब ग्लासियर है दुनिया भर में। मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण सब बर्फ के ये चट्टान बहुत हाली हाली पिघलता, और हर बरिस जो विश्व विरासत बर्फ के चट्टान बा उनमें से 58 बिलियन टन बर्फ पिघलता। और ई मात्रा की तुलना सकल जाए फ्रांस और स्पेन में हर बरिस पिए होला पानी के मात्रा से करे, और नतीजा ई होता था कि समुन्दर के ऊंचाई बढ़ ले जाता। आज के दौर में 5% से ई ऊंचाई बढ़ गल बा। 2050 तक विश्व विरासत बर्फ के चट्टान से 1/3 बर्फ पिघल जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस से जस्ती नई बढ़े देवल जाए, तो 2/3 मतलब कि द्वितीय बर्फ सकी पिघल जाए। और COP27 के जो सबसे बड़ा चुनौती बा वो यही है, 18,600 ग्लासियर होला, 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्लासियर ही है, और ये पृथ्वी के ग्लासियर के 10% ई अंश माना जाला। इमें से सबसे ऊंचा बर्फ के चट्टान माउंट एवरेस्ट के भेरी पावल जाई होला शामिल बा एकर में, और सबसे लंबा बर्फीला चट्टान अलास्का में बा, और आखिरी ग्लासियर अफ्रीका में बा। यूनेस्को के अध्ययन से पता चला था कि साल 2000 से CO2 गैस के छोड़ला से इस सब ग्लासियर तेजी से पिघलता, कहे कि तापमान बढ़ ले जाता पृथ्वी पर। जो सबसे आसान समाधान बा इस समस्या के वो ई है कि CO2 गैस के छोड़े होला जो गतिविधि बा ओके चाहे घटावे के। यूनेस्को उस सब देश के सहयोग देवे के तत्पर बा जे लोग इस समाधान खोजत हवन सा और ऐसा कदम उठावत हवन सा। साथ में यूनेस्को एगो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फंड के भी गठन करे के पक्ष में वकालत कर रहा था, जेकर से ग्लासियर के मॉनिटोरिंग यानी ओकर पर नजर सकल जाए रखे और ओकर संरक्षण करल जाए। जैसे बोलली है आधा मानवतावाद सीधा रूप से या परोक्ष रूप से ग्लासियर पर निर्भर बा, पानी खातिर, कृषि एग्रीकल्चर खातिर, ऊर्जा बिजली खातिर, और हमने के बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के ई एगो खम्बा है, एगो स्तंभ है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार अनुराधा के साथ आप आज की चर्चा कार्यक्रम सुन सकेंगे। तो चलिए एक भोजपुरी गीत आपके लिए, मिलेंगे 10 बजे। हम भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिएगा, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं।

0: करुणा इस समय स्टूडियो में है, आइए इनसे समाचार सुनते हैं। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्षों की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगीकरण पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ विराम गुलाम और केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉ नवीन राम गुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। मॉरिशस का लक्ष्य इलाके का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। 4 से 9 मई तक आयोजित ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इस पहल का मकसद एक कानूनी ढांचा और रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। इसके लिए यूरोपीय संघ, विश्व बैंक का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही सेशेल्स, कृषि खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को भी मजबूत करने की योजना है। काजिनो एम्प्लॉयीज यूनियन का कहना है कि मॉरिशस के काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं है। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। क्यूपिप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस के काजिनो ने सरकार के खजाने में लगभग 1.3 बिलियन रुपये टैक्स के रूप में जमा किए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने रविवार 10 मई को पेचित रिविया में हुई घटनाओं के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत स्थल पर ही हो गई थी। यूनियन ने कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार और डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार अधिक कठिन बना रही हैं। और विदेशी स्तर पर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता से पहले कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। इसके जवाब में ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता बताया और कहा कि दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होंगे। उन्होंने शिखर वार्ता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। बीजिंग में हो रही इस बैठक में व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान, प्रतिबंधों और ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: सभी को नमस्कार और आदाब। इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे साथ हैं कादेर कोदादीन, दीपशिखा प्रोडक्शन सहायिका और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो है रितेश महावीर। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे अभी से लेकर दिन के 10 बजे तक। वैसे आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो विषय हैं वो क्या है, तो आज का हमारा विषय समर्पित है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को, फैमिली बजट एंड इंडेप्टनेस, यानी कि पारिवारिक बजट और बढ़ती कर्जदारी। तो आज के समय में महंगाई, रोज़मर्रा के बढ़ते खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जिम्मेदारियों के बीच परिवार का बजट संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है और कई परिवार आर्थिक दबाव और कर्ज के कारण मानसिक तनाव का सामना भी कर रहे हैं। तो इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज इस स्टूडियो में हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स उपस्थित हैं। एक जैसे आप देख रहे हैं श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी हमारे साथ हैं और श्री रणवीर सिंह मिट्टू जी। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत और नमस्कार हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए कीमती समय निकाल करके। तो जैसे कि अभी हम बोली जा कि हम बताब जा फैमिली बजट पर, तो मिट्टू जी हमने के पहला ये बताओ कि जो बजटिंग जो है फैमिली बजट जो है एक मतलब सरल शब्दों में हमने के समझाओ कि

0: ई कौन ची हक इकर मतलब का हा
1: जब बजटिंग के किशा होला बजटिंग के एगो फैमिली बजटिंग को बोल जला एगो बजटिंग बोल जला कैसे हम अपन एगो प्लान कैला सा कैसे अपन डिपॉन्स सब करब सा जाहिना सब कोई को बजटिंग कैला एंड झगते मा ओबे झगते मा आदमी लोग बजटिंग कैला से इसे लोग के लोग के प्लान करे के चाहला कैसे जान सा सब चीज त आज से सब के सब दाम त बढ़ता तो हमने की क्वाजे चाहे को बजट करे के जामी कहा है हम सब से अपन अपन डिपॉन्स करे दाप्रे हमने के रेवेन्यू है चाहे जितना लापे सब मिलेगा कैसे सब से अपन डिपॉन्स करे काहे प्लानिंग होला प्लानिंग होला काहे जब मैं जब एगो बजट करवा तब वो कंट्रोल रही ओकर बीजे में कंट्रोल रही कुछ हाँ किने के कुछ हाँ किने के तब एगो दूसरा सवाल आवेला एला नीड्स एंड वांट्स एगो नीड्स प्रोमियम तो चला के नीड्स दिखे के कौन चीज चाहेला आवश्यकता बा कौन बेसिक नीड्स बा जब हाई सब फुलफिल कर जब हाई सब डिपॉन्स प्लान कर दे तो आगे में हमको प्रॉब्लम नहीं हुई मैं हाई एगो प्रॉब्लम नहीं उसको डेट में हेले के तब प्लान कर तब जैसे बेसिक प्रोडक्ट किन सर जिस बोल राशन किन सर एगो प्लान कर एगो एगो लालिस बनाए ला सर कुछ चीज चाहना किने के कुछ चाहने किने के तब वही खातिर प्लान अच्छा बात जमें कहें लाफे जिमो में जब लापी में लाफे जिमो में इस बार प्रॉब्लम हुई तो सोते जैसे पैसा कि मैं कुछ सब किने तब लुके जब एगो प्लान करब तक जस्ती अच्छा से हाउ मुआवा से बिताए सब चीज दी पहुँच करे
0: तो एक पर जस्ती खुलासा दी अब जो ई कार्यक्रम के दौरान तो जयश्री जी हमने के बताओ आपके देख में है कौन चीज है फैमिली बजट
2: फैमिली बजट जैसे बोलीला सब कोई के एगो रेवेन्यू हो जैसे उकर पैसा हो काम करब सालिया मिलेला तो एगो फिक्स सालिया मिलेला अपनो काम करब एगो फिक्स सालिया मिलेला नहीं ये नहीं कि जैसे पैसा मिलता खूब खूब खूब चाहे दे पहुँचे करके नहीं हमी के एगो फिक्स सोम मिलेला तो हई सोमवा में से हमी के चाहेला जैसे बोलिया से बजट प्लान करे के कौन चीज चाहेला किने के आगे जस्ती जरूरी बा ओके बोले और जौन चीज सकब सा ताले बाद में किने के जैसे बते जैसे एगो हमके एगो लुटो जोली लगल
0: हाँ।
2: हम बोलते हैं हाँ हाँ लुटो आप किनब अपन दूसर चीज के ध्यान नहीं रखब लड़का के ट्यूशन पे करके बा लेसों पे करके बा घर के लोन बा पे करके इलेक्ट्रिसिटी बा पे करके नहीं नहीं जल्द चल जाएगा लोटो किने तब जैसे अब लोटो किन ले बता पैसा चल गल तो अब क्या करब हर महीनावा कैसे बीती इसी से हमके सब कोई लोग के चाहना एगो बजट करे के अपन डिपॉन्स अपन रेवेन्यू के अनुसार चाहना प्लान करे के
3: आजकल काहे काहे ये जरूरी हो गल बाकी एगो परिवार के ये चाहे बनाए के एगो एगो प्लान
2: बजट बजट जरूरी हो गल बा आज के दिन में
3: आज के समय
2: पर क्योंकि सब चीज तो महंगा होता सब चीज बढ़ल जाता जहाँ जाएबा बुटीक में जाएबा एगो कोका किने तक कोका के दाम ढेर बढ़ गल बाते तो ऐसे जब बजट नहीं करब तक किन ले जाएबा नहीं जानबा कितना पैसा दे पहुँचे करत हुआ अब पैसा दे पहुँचे कर दे तो देख घर अब तो देख एगो जूसा जरूरी काम रहल करे के तब पैसा नहीं बता
3: कैसे अभी कुछ पहले भाई बोलक नीड्स एंड वांट्स हाँ, एकर पर आवे रहा है
2: नीड्स एंड वांट्स से ताजा नीड्स बोलल जला बेसिक नीड्स जो चीज जस्ती जरूरी बा जैसे खाना इलेक्ट्रिसिटी के बिल वाटर पानी के
3: जो रोजाना के चीज है हाँ। जैसे से बे वाटर इलेक्ट्रिक बिल बस ये सब चाहे ये जरूरी है
2: ये जरूरी है नहीं पे ये कर बता कता जाए कता जाए नहीं तो पेनाल्टी पर ही पे ये करे के तो जस्ती आर डिपॉन्सा बढ़ जाए तो समय समय पर पे ये कर अपन सब चीज बजट के अनुसार तो हाँ। देख लाफे जुमा थोड़ा बच थोड़ा पैसा बच जाए नहीं तो ऐसे तो सब पैसा सब चीज में चल जला तो देख लेवें ले होल बहुत परिवार में ऐसे प्रॉब्लम होला लेवें ले होल तो लोग के पैसा नहीं बा अब पैसा नहीं बा 20 पे ये करे के जाए के काम करे तो अब क्या करब जाए उधार ले
0: ये हमनी के जो इन चर्चा आज फैमिली बजट और कर्जदारी पर भी बा। तो जैसे कल 15 मई है, सब कोई जाने लजा लेक कैंस में कि हमनी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावी लजा। तो हमनी के जो इन प्रोग्राम है जस्ती पर यही फैमिली भी पर रही। तो सब बोले हमनी के जैसे अभी बोला एगो एगो मतलब

0: पैसा आगे इलेक्ट्रिसिटी दे लो टेलीफोन सब ये सब हर महीना बिल आवेला चाहेला पे करके नहीं पे करब तक कता जाए। अब कोने परिवार से एम में लेलक बा उधार पर कुछ सामान लेलक बा तो ऊ चाहेला पे करके
1: मंथली
0: चाहेला पे के कोने परिवार के लोन बाते लोगों के चाहेला पे करके। अब लड़का लोग लेकुल जाला लेकुल के सामान चाहेला उहू खातिर पैसा चाहेला और आर जरूरी है खाना जैसे राशन चाहेला किने के ये सब चीज नीड्स में आवेला।
1: तो भाई मितु जी तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जुन है जनता के कैसे जानकारी देवेला कोनो अभियान रहेला तो लोग बगल से सिपा फाइनेंशियल अवेयरनेस खातिर कोनो अभियान रहेला कि कैसे जनता के जानकारी देवेला जा
2: ना जैसे से हमार कोलिग बोलक को को स्पेशल जहाँ प्रोग्राम नहीं होला जब हम यहाँ चेक सब करे और मैम तो बोलिया सदमी लोग से कुछ यहाँ करे कि कुछ कैसे दीपांस करके इस पर प्रोग्राम के इधर से राजू में है हमने के गुजर यहाँ मजे आदमी के मिसाल पहुँचा के जनाए के कुछ होता तब है से आवेला फिर से आवेला कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवेला काहे भी ऐसा कंज्यूमर कैसे कोई डिसीजन लेबा कैसे बजट कर लेबा डिसीजन चाह लेके तो प्रीमियम राइट्स ऑफ कंज्यूमर राइट फॉर इन्फॉर्मेशन तब तक इन्फॉर्मेशन मिली कुछ जगह किने कुछ पे कर इन्फॉर्मेशन मिली तब सब स्वास्थ्य करे ना तब बजट के हिसाब से अपन डिसीजन लेबा कुछ ना किने के हर सब राइट ऑफ कंज्यूमर हिलेला तब में हिलेला रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करता ओकर पैसा से कैसे डिपॉज करता कैसे बोला हमारे कोलेग बोला था एगो बजट करब तब तो जानकारी हो कहाँ पर डिपॉज ना करके जैसे आदमी का लोन सब रहेला सब चीज़ पे हो जाएगा सब कहता जा लोन आगे तब जो बोला जा जब सब डिपॉज कर देवेला तब एगो डिस्पोजेबल इनकम मिला उसके एगो सेविंग कर अभी के जमाने में जैसे जाना कि सब चीज़ चढ़ते जाता तो आदमी को बजट करके टेंशन डिफिसल होता तो इन्हें बार फिर कुछ बोल जरा निकाला तुम सबको बजट में से मैं हाँ बजट आपकी फिट हो के तब हवे खातिर वो लोग करते जहाँ में वो लोग के प्रॉब्लम नहीं आगे में जैसे नीड्स एंड वॉन्ट्स रहता जैसे नीड्स रहता वॉन्ट्स जैसे बोला का एगो दाफे कि ना ऑफिस कैसे दो महीना में कोई शादी बा एगो एगो भोज पहुँची हुई के तब चाहे लगे जाने की कैसे कैसे विजवा करता तो कैसे पैसा ना मार सकते तो सब ऐसा करे अब जैसे आवेला जैसे लाने आवेला बोनिस मिलेगा आदमी मिला हाँ चला कोई वो जाफे किन के घर में डाले के हाँ तो ओके जानेला कोई बोनिस मिल बा तो जाके सब किन का आने देवेला तो हर आदमी बोला हमेशा किने के आगे वो जहाँ जाने के कुछ किन कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा थोड़े लोग राइट छेला राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू चूज स्वाजे करके और इन्फॉर्मेशन मिल के उस आधार पर तब लोग डिसीजन ले कुछ छेला किने के पागे बहुत है जब एगो पाहो जाला कुछ चीज़ किने तो लड़का लोग लड़का लोग सीखेला पाहो से जब पाहो एगो निमन से बजट करता तो असर वाला लड़का को पड़ेला तब जा लंग से कुछ चीज़ किने तब दिखना था पाहो कैसे करता कैसे किने था तब पावा अपन अपन अपन बीजे करे बाबू तब फोरे है सब दुआवन जाना था तब उसका आधार पर किचुत करेला तब वो है कैसे बोलते हैं डेट में नहीं हेली तो डेट में हेला तब हुआ मेरा कैसे बोल बेसिक नीड्स फुलफिल करके लड़का लोग के खान पान लोग के बेसिक नीड्स कैसे लोग के घूमे के कपड़ा सब पीने के सब तब सब नीड्स सब फुलफिल होला तब देखना था कुछ करके छा आपके तब जैसे संग से किने या कमती या तो लोग के आधार पर दे पाओ लोग बीजे पर अरे सब बीजे फैमिली पा ही नहीं है कोनो के काम के हर रोज के हर समय पैसा मिला तब कि नीलम सखाई के कोनो के महीना पर मिला तब सब फैमिली के बीजे पागे नहीं है अब सब को भोजन किने से पागे नहीं है उन लोग के मजे उन लोग के एक ही बालों से नहीं सक मजे माँ के दौरान में देखे ना कौन माँ छा किने के फ्री वही खाने बोले आदमी लोग के जब देख बस अब फ्री कौन पागे कर कहाँ कोई सस्ता मिला था
1: कहाँ कोई
2: हाँ देखे के रिव्यूज देखा कहाँ कहाँ पर है बात देखा पोजुआ कैसे बा न बोले वो पोजू था क्या देला अब घर में बोला तो बीजे जैसा जैसा अगेस्त है बा तब भाव में अब किन्नी लगे पोजू फोन में होता जब भाई कि जब बोले आदमी लोग के देखे कि हर भी राइट आर उकर उकर उकर इन्फॉर्मेशन मिल के अच्छा है तब जाने कुछ कोई डिसीजन सकने से ले
1: अच्छा ये चर्चा के आगे बढ़ से आगे एगो श्रोता के सुनी ला जा। हेलो
3: हेलो बहन जी नमस्ते
1: नमस्ते बहन जी
3: भाई जी को नमस्कार।
1: हाँ, आरे को बहन भी है।
3: आरे को बहन हमार उनको नमस्कार बोलता है।
1: नमस्कार।
3: आज जो तो नमस्ते करता है।
1: हाँ, अच्छा बोलो।
3: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख ले हुआ।

0: ધન્યવાદ.
1: બહુ સરસ પ્રોગ્રામ રાખે એવા જે ત્યાં વિધિ દેવા થવાનું ભૈયા આરું બહેન જાની ના અભી કે દિન જન કે યાર બેઠી અભી આવત આ નહીં જન બાકી આજે કે જન જન વિધિ પાસે હોગર અભી હર જન દુસર આવત આમ કે આજે ચાહે હો પ્રોમન સાઝે કરી અબ घर के कौन चीज करत हुआ कैसे भी बोला नहीं भी लाली मेर के बोला हुआ जा अभी लाली मेर की तू नहीं चाहिए कर ला तो सब घर में किल्ला खाए के सब किल्ला चौन चौन नहीं खरीदी ले जब कुरो में काट के चल रहा था कौन शोभा बात हुआ दो तीन गो पापी रख दे लेवा नहीं ये के ये कर ला पानी के आता नहीं के ये कर ला यानी ना हर सब चीज के वो प्लान कर दिया यानी ये वो बिजे बल से कितना तो पैसा मिलेगा कौन से चीज आगे चाहे करेगी नहीं क्या बोला है कि ना हो कि ना हो कि ना खाए के कि ना एगो गाती आग में कि ना जो तोरा निसेसिर बा हो चाहे कि ना कुछ कुछ की महीना के कि ना कुछ सेमेंट के कि ना अरे पानी लाल मेर के है देरी नहीं कर रही जहाँ मिली तोरा पर हाली से पे करता
0: जी बहुत
1: अपन हाथ में जनता कितना पैसा तू रखत हो कितना तू औलाद करवा है सब सोच के है सब काम करी चाहिए
0: बिल्कुल सही बोला हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके फोन खाती और सही बोला बहन जी कि जैसे अभी हमने बोली जा कि सच्चे के हाथ में जितना पैसा बा उसके आधार पर हमने खरीदारी चाहिए करेगी हाँ भाई जी बोला
2: तो जैसे बोल सब बजटिंग है ऐपू तो हाँ जब एक आदमी सुपर मौसी जला वो जला कहा दू गो इजाफे बीजा बा वो जला था दस गो इजाफे उठा का बोला तो प्रोमोशन दिखिला सब चीज दिखला बोले हाँ किन के रख दिला वो बीजे नहीं दिखिला विकास जब जब जान से सुपे मौसे तो एगो कैसे बोल जाए आदमी लोग के डुबावे बोले आवा तो किने सर तो हम जाते हैं दू गो जाफे किने तब जब है तुम्हें तो बीस गो जाफे लेके चाहेगा तो वो बीजे दिखा उसे चला कैसे बोलते एगो बीजे में ऑडियो चल जाला तब अलबत हो कल बैला चला वो कल राइट्स पर अकल को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था फ्री बा प्रोमोशन बा सब चीज बा तब अपन बीजे दिखा जिसना पोजा दिखा अब एक किन ने रख दिला घरे तब हाउ महीनवा कैसे जाए तब प्रॉब्लम हो जाए कि हर खानी बस आदमी लोग के सोच विचार के देखे के काहे परखे के कुछ बा किने के देखे का अच्छा बा किने के किने तो कुछ कर सकेंगे
0: काहे कि कबो कबो आप अननेसेसरी मतलब कबो कबो एगो रेफ्रिजरेटर या कुछ आपके फ्रिजिडर टूट गल बा तो ये एगो अलग से आल बा कैसे ये आपके बजट आपके साले में नहीं आया कि हाँ एक चाहे पर के सेविंग चाहे ना करे थोड़ा थोड़ा सुन जैसे वोंस ई वोंस में आवेला कि कबो कबो हमें रेफ्रिजरेटर उतूट कर बा एक डिपॉन्स चाहे करे के अलग से तो ऐसे में अगर पैसा हुए नहीं रही तो कौन ची कर बा
3: चाहे ना आदमी लोग के जब अपन बिजे करे रंग सा हमेशा एगो इमरजेंसी फंड जैसे बोली रंग सा रखे के इमरजेंसी फंड कबो काम चलाओ आवेला कबो एगो कोनो चीज के काम में चलावेला कबो नहीं जनबा एगो मरनी हो गल अब जैसे बोला था वो फ्रिजिडेयर टूट गल अब होने एगो एविताशो मिल गल तो अब इमरजेंसी नहीं रही इमरजेंसी फंड नहीं रही तो का करब जेब मांगे उधार लेब तो फिर से उधार में पड़ जेब अब उधार ले लेता हौ महीना के चाहे ना घुमाए के नहीं घुमेब तो कैसे हुई
0: और जैसे प्रायोरिटी के चाहे जाने के ये सब जरूरी बात है अब हमने दूसर हिस्सा में हम प्रोग्राम जन कर्जधारी मतलब बढ़ती कर्ज में ये कौन सी बुबाई कर पर
2: जैसे कर्ज बा आदमी लोग के जैसे बोलिस इन्फॉर्मेशन चाहे ना एक आदमी जैसा कर्ज में बाऊ वो लोन ले ले बा जैसा किन ले बा तब बढ़ती अब सब बढ़ा था सब चीज़ बढ़ा था दाम के बढ़ा था बेसिक नीड्स के दाम अब ओके ओकर बीजे तो नहीं तेरे रिश्ता होगल बा अब ओके बन करता इनफैक्ट मतलब ओकर एगो एगो अप्लायंस टूट गया कोई माइक्रोवेव टूट गया अब कुछ करी उसे हैवी कर रहा रुच के तब बोली हम छा कि नहीं कि अब कोई हाँ करी तब फिर से चाहे कोई दूसरा बड़ी ए तो हम लापे बा दिखाते आर को लोन मिली तब जो हाउ बजट जो पैसा जो जो रहा जो ओकर बेसिक नीड्स का थल ओकर नीचवा जो ओकर फैमिली के ओकर ओकर बेसिक नीड की ना थल खाए पान खान पान सब सब पे का थल अभी चीज बिल सब पे का थल तब भाव मतलब बिजवा में से चल जाते हैं सुन सब चीज की ना था फिर से को लोन ले लग तो डिजाव डिजा लोन में बा तो फिर से को लोन ले लग तो वो था हर हिसाब से बीजा बा हाँ तब ओके छा जाने के इसकी सकी लोन हबी किने ऊ बिया देखी टेंशन पैसा जुटाए तब बोली आतान कब एगो दो महीना टेंशन नमाज के एगो पे करे किन दो देखा पसी आदमी ऐसे जैसे कुछ आपने दूसरा जाल किने की दूसरा चीज पर सिर्फ हाउ लेवा की बिज़ा बा हाउ लेवा की बिज़ा मतलब कुछ कर दो महीने ना तंग करी तो वो पितो है को डेट में हेल जाला तो एको सेक हो जाला डेट डेट के सेक हेलते हेलते के मजा किन्तें किते उतने नहीं जान बा लेकिन तेरे पे एक और

0: L'intrigue d'un job, ça m'a payé quoi. Et que vous n'avez pas l'intérêt de battre doubleur d'un prix. Alors, tu
1: Oui.
0: quoi, pour Dieu, tu vois, 1000 roupies, 10 000 roupies, de payer l'intérêt. Tu vois, ça va me penser que les gars, j'ai un produit que bizarre, il est absolument au cas Kosovo, une gars que les gars, c'est 30 mois qui après ça, régulièrement, il y a des higher purchase, un crédit sale, higher purchase, pareil, 30 mois. 30 mois, mais ok, il limite des 30 mois, ok, tu as l'intérêt là, et tu as bien que ça se tient, que quand il sait, il a fait qu'il n'est pas. Puis c'est right and responsibility, elle est
1: Ah oui.
0: là, right information, elle est là, right to choose, elle est là. Ah oui, tu as fait ça pour là, tu as bien de passer dernier là, tu as fait qu'il a une informed decision, que tu as informed decision que tu veux là, ou j'en ai, ou customer smart, j'en ai là, hein, hi, हाई बहुत हम कि हमने कि नफाओ कि नफ बस हाई जहाँ पूजा ने छा सकता को आदमी को कुछ नहीं हाई किन ले हाई अच्छा बा भाव ने छा वही खाने बोई ला सा चारों तरफ देखे के कहाँ अपनी कुछ किन चुन सा जब एगो फौजी मिल रहा है तो हम लगो लाल बाबा फौजुआ एगो अपलायंस टूट गलता लाल बाबा एक बाहर करके तो अगो प्रॉब्लम है बना जैसा को लोन नहीं लगो राफे किने के अब टूट गल अब नहीं सकते सर्विस करे अब लालवा निकाल सा हम ही लोग एगो प्रोसीजर है ना जैसे आज कंप्लेंट करा था कल ने सॉल्व
1: कल
0: होना है
1: पूछते
0: एगो प्रोसीजर है लालवा शुरू कर अब सर उतना दिन में उतना लिन अदमी को पूजी ने सेवी करा था तब ओके चला कोचिंग ने उकर जो लोन ले पे करिए कम नहीं सेवी
1: तो
0: करता
1: हो जन आसान लोन आपके देखे में जयश्री जी आप ये आसान लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है ये ज्यादा जनता लोग के मतलब खर्च में प्रेरित नहीं करेला
2: हाँ, ये सब स्कीमों तो अट्रैक्टिव हुए बात है पस की बोले लेंगे सब देखबा जाइबा तो अभी फित मामा के
1: अभी आए बात है
2: आओ तो देखबा आस्ते आस्ते ला पेये दा 30 मोआ सी पा पेये सान लें 6 मोआ ग्रात्वी है सब चीज़ वन तो देखबा पहला बार तो अट्रैक्टिव लोग के ला आकर्षण लोग के ला लेकिन ये इसमें हेले से पहले चाहे ना जैसे बोला भाई जी बोला है राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू चूज एक्सेट्रा ये सब चीज़ वन ध्यान डाल के तब चाहे ना कोनो क्रेजी में हेले के और ये रिपेमेंट कैपेसिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रिपेमेंट कैपेसिटी जाने ला चाहे ला जाने के सकबा पे ये करे आज पे ये करत हुआ था 6 महीना में सिचुएशन कबो पारे नहीं रहेला कबो मलाज हो दे जब तक नहीं सकब काम करे जाए तो का करब नहीं पे करब तो लेट घरे आए लगी ये सब चीज चाहे ध्यान में रखे
1: और ये
2: कि
1: सब अगर ध्यान में नहीं रखब तो तनाव पैदा होला
2: हाँ तो
1: और
2: स्ट्रेस
1: में स्वास्थ्य में बिगड़ जा रहा है स्ट्रेस से हो जा
0: हाँ
1: लो
0: जैसे यो फार्मी हा फार्मी सोसाइटी में एगो हिस्सा है पूरा हाँ फार्मी वही से सब लड़का रहेला माँ बाप रहेला और गाँव जमुने से बोला सा सीनियर सिटीजन रहेला तब जितना जो डिसीजन लेवेला फार्मी हुआ मैं वो सब क्या फिट करेला लेको लड़का के फॉर एग्जाम्पल था एगो फार्मी में को लड़का बा एगो फौजी किन लड़का के सिपाही को जुजू किन ला तो ओका मैं एक बार सेफ्टी स्टैंडर्ड था देखे के चाहे ला लेकिन नहीं एक बार एगो जुजू था कान देला सिपा प्रॉब्लम बा बस हमें लगे एगो एगो हमने जुजुओ के टेस्ट किया हमें लगे मिनिस्टर में देखी ला सा जुजुआ अच्छा बा सिपा ओका मैं बार पर्स बा कि लड़का खा रही सके प्रॉब्लम हो तब उबिया ओका मैं बार लिक्विड बा सकी हाथ जा रही सिपा सिपा सकी कहूँ छुआ है तो लापू जा जाए हर सा हमें के मिनिस्टर टेस्ट किया जैसे पेली सब फ्लाम अब डिटेस कर जैसे आज आगने धरी से एगो प्लास्टर लग देबा आग धर दले कोई प्रॉब्लम होई थवे कन सब भाई साफे वन पाहो जानी कुछ सा करे के वार्निंग साइन बा कोन लास के कोन जुबा सब पोजुआ में कोन स्मॉल पॉट्स बा त आई अच्छा बा जाने की हम जब हम टेस्ट कर ला सर त टेस्ट को टेस्ट हाई होला एगो टेस्ट मिनिमम होला अब एगो स्मॉल पॉट्स के को जुजु किन ला तो घरे अनला लेगा के दिला तो तीसरा कलर बा पास हो लोते सब स्मॉल बॉस अब पाओ का रिस्पांसिबिलिटी हेले ला कि ओ कलर जाके देखे कि जब हाई पोजो मुंह में नहीं था सी पा कुछ कर तो कसे तो हाई बोले जा राइट्स बा अन रिस्पांसिबिलिटी बा तो हाई डिसीजन को पाओ ले ला एगो जुजु कि ने के तब भाई घर में अलग तब दिन को प्रॉब्लम हो लाइक बात तब क्या अफेक्ट हुई पागो
1: जुजु के
0: फार्मीवा
1: अलावा और जैसी चीज रहेला
0: हाँ तो और फार्मीवा क्या अफेक्ट हुआ हाँ तो फार्मीवा लाइका अपन पाहो की कॉपी करेगा पिछले जब पीटी से भागो जिसे करेला उसने कहे रंग सा तभी कहने जो लगा पाहो वे एगो निमन डिसीजन ले एगो जाफे कीने के कि उसका असर लेकर वो पड़ेगा तो लेकर पाहो पाहो की सुविधा करी जब वो पाहो नहीं बोलते सब पाहो निमन मूवी डिसीजन ले बिला कोनो निमन डिसीजन ले बिला कोनो बफा एगो जाफे की में ता 100% है नहीं रही अच्छा नहीं रही ना बफर को प्रॉब्लम हो रहा था भाई लड़का लोग मैं जाने ला तब जैसे कॉन्टेक्स्ट फैमिली बोलते हैं तो है सब एक फैमिली में डिसीजन ले रहा था अफेक्ट करेगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में डिपेंड कुछ की ना चुन सा
1: तो हम लोगों के श्रोताओं और दर्शकों से भी मांग करते हैं, आप लोग अपने बजट जो है वो कैसे करते हैं, किस चीज़ का सामना करते हैं, बेशक आप हमें अपना मतलब अनुभव बांट सकते हैं 402-808-85 पर। तो फिलहाल कादिर आपके लिए गीत चलाने जा रही है।

0: आज की चर्चा।
1: अक्सर कहा जाता है कि छोटी छोटी बचते ही बड़े संकट में सहारा बनती है, और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्रीमती सुपोल जी, जय श्री सुपोल जी, और मिस्टर मिट्टू जी हमने के संगे हैं। तो अभी जैसे हमने बोली है कि फैमिली बजटिंग कैसे चाहे करे के, तो हमार देखे में एगो जब कैसे मान ल महीना के खरीदारी कर राशों जब चाहे लेवेला, तो ये महीना हमने खरीदारी कर, तो आगे से भरे के एगो श्रोता के सुनी ला जा। हेलो हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते भाई जी, स्वागत है आपकी चर्चा में।
2: मेहमान लोगों को भी नमस्ते, और उन लोगों को बहुत धन्यवाद
1: जी भाई जी।
2: तो बहन जी एगो साहब कालकिर से शुरू कर रहे, जैसे कि लोग कछो लाका जिस

0: 000 roupies, électricité 1000 roupies, pani 500 roupies, ration 15 000 roupies, légumes 4 000 roupies par mois, gosse moitié 4 000, magasin qui paye égale 3 000, laïka qui dépense, à l'occasion de mettre le capra ou le prix de la Tu as le budget qui est balancé parce que nous avons des bases salaires beaucoup comme tu vas. Quand les bases salaires ne sont pas mises, tu as le budget qui est balancé. Et quand la boutique est boutique balancé, tu as le prix qui est balancé. Et quand le prix est fixé, tu as le douceur, 4 dollars. Et quand le douceur rupiah est égoïste, tu as le 400 dollars de boutique, mais tu as le affiché. Ça veut dire. Ego la crème donne 100 roupies, ta ou d'aller au carme 400 roupies, pour y afficher car là. Ta ou l'ogé barca chour ha, arrière bal salé, kitna baris se monte ni hulba, ta tohar prime tohar kayele kitno bidze karba. कब्बों नहीं बालों से बहुत धन्यवाद बहन
1: धन्यवाद भाई जी और हमर देखे में जो इन भाई जी बोल लब इतना सब कोई एकर मतलब इतना सच तो नहीं है हमर देखे में
2: ना जैसे भाई जी बोल लब प्री बा 200 के प्लस 400 डॉलर था तो अच्छा मैं बोले कि मोरिस में तीन गाड़ी प्री है ये वो प्री फिक्स है algo prix contrôlé algo prix haya libéral là et c'est bah j'ai bloqué prix wa et vos affaires mais contrôlé ni hata ou combien à ce moment ou prix wa ça qui n'a d'aller où ta fils a là ou carrément une responsabilité ou que des cata manga de vous ça da que place des que je sais Maurice pas fixé à pomme de terre rayon gaz ça fixé ou que c'est justice manga ce qui était et gouvernement produit le mock up c'est doud ça va doud à tel va ça fait gouvernement subsidie là 50 piqué ou pourquoi il fluctue de façon fixé ça ou que c'est justice ça avait été non tu as que privat le que j'ai dans les que quand fixé ça quand mock up mais alors quand libéral ça libéral donc bulletin c'est côté quoi cas pas blague ça ça fixé là on a mis gouvernement fixé que la privat ou privat comme soit dali ne veut connaître ce qui dali il go place qui descend métier go place qui descend 50 tant que information mille de rien descend 150 privat de grand kin ba
1: कौन ची बोल बाजे ऐसे जे जन भाई जे भी बोल लग
3: हाँ जब है प्री जैसे बन प्रोजी के बोली रहा सा लिबरल है नहीं फिक्स है तो कमीशन लोग के द्वार बा नहीं पुत कौन प्री डाले के अब रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं ला ग्राहक पर जब जा लंग सा किने देखा तो उन सब प्री जाने लंग सा हर मगाज़न वाम में प्री वा 100 रुपी बा हर मगाज़न वाम में 400 बेचा था तो हम ही बोली रहा सा नहीं किने के हर मगाज़न वाम में
1: और मान लाख हम ही ये हमनी के जरूरी सामान नहीं है मतलब चाहे ना किने के बाकी जैसे रोजमर्रा के जीवन में जुन सबसे
3: एसेंशियल
1: है ये पर हमनी बात नीड्स और वांट्स पर मान लो ये महंगा है तो मान लो एक दंपति के सिपा वैन वैन मिला हुआ था उन के घर में मान लो वैन मिल रेंट्रे होता तो एक पर कौन सी सब बोले कैसे ओके चाहे तपन मतलब पोटाश करे के अपन
2: जैसे आदमी के दीपा कौन ला पे मिला था दीपा एगो फुसे तक मा जा आवरे दे ला सब मतलब आदमी के मिला था अली 20000 से बोला जैसे आगे हमने के मां बाप करा था एगो लोग रीजन हल एगो लोग हर को जान सा राशो के नहीं बताए तब एगो लोग को लालिस करा था लालिस वाले ली की जात लंग सा ला बुची जात लंग सा सा दिखा था कंपाई कर था लिखा था कौन प्री है कौन प्री है लिखा था सा एगो बिजी कर
1: था ये बोले कर ली है एगो मान आज एगो है महीना के अपन खरीदारी कर लेला आवत महीना के अच्छा ने रहत मजे एगो रिकॉर्ड रखे कि
2: जब जब प्राची को कर यान सा वैसे हर महीना कर एगो लालिस फिजिक कर एगो लालिस पोता ने बताए एगो लालिस कर आगे हमने बोला आगे के लिए बुक करत लंग सा लोग बिजी कंट्रोल में रहल तब जब से ऐसे को लालिस कर हाई महीना हाउ महीना एगो ओवर टाइम कर से कुछ वेंसेंट मी मिला तो उ हिसाब से को बिजो एडजस्ट कर यान सा पैसा वाला मशीन सा तो हाउ महीना से कम टी मिलबा तो हाई 3 महीना मा में इस से कंपेरी के कंपैरिजन करे कौन प्रोजेक्ट मोटे होलबा कौन प्रोजेक्ट कम टी होलबा कौन हम के चाहिला कौन नहीं चाहिला हाई बिजो लोग के को लीड देवेला कहाँ को ले जाता कौन सोमाते कहाँ जाता इसके प्रोजेक्ट मोटे ले जाता या कहाँ पर चल को घटाए के कौन कौन बिजे करे के उबिया वो फौजी निकाले के ने छाने कैसे बता ग्राहक का बोला वो लाख है मेरे लाख है वो कुछ में चिका सब आज डाले काले दे दे पा आदमी को कर कर से भी कुछ करता कुछ चाहता वो तब हाई बिजे हुआ ए पोतो हबी के लिपक में
1: जाइना हां सब
2: सब कोई मजे ओके हां कोई के लेता ने को लालिस करे के जैसे सालवा बोली एक आदमी लालिस नहीं कर ला गल दू गुजाफे कि नहीं तब बीस गुजाफे लेके चला तो बीस जमा आंधे चल गल तब हमें कंट्रोल नहीं बना जब

0: को बीजे करी ओकर लालिश करी सही को पाए करे जैसे हम ग्राहक का बोला बीजा में कौन थोल ने पा डिपो हाँ कौन एंगल पे दिखा था जब एगो बीजे सक में कौन थोले करे हाँ चला जो इजाफे कर था आगे एगो जहाँ चला रिस्ट्रिक करके
1: अयो में जब बल्ब देखेला बिजली बल्ब ओ हमनी के यही मांग करेला कि लोग के चाहे लेड जैसी यूज करे के उसका प्रयोग करे के बस वो कमती कौन से काम थी कौन से भी कर रहा और जहाँ तक जो सब्जी जो घर में रोब जो तनी तनी चीज ये सब में से बचत सक ला करी
2: हाँ, जब घरे थोड़ा कुनो कुनो के है नहीं बात लगते है थोड़ा नहीं बात तब पो में सक बा प्लांटे थोड़ा कुतुमिली डाल दिया लाके जुआयों तब ये सब चीज नहीं पड़ी किने के बाजार से जब नहीं किन बता अपन बजट के जस्ती सब मैनेज करे अब जेकर थोड़ा बहुत लाते है बातें घर के आगे घर के पीछे तो थोड़ा लेगिम डाल दिया प्लांटे इस सब से एंड एक्सरसाइज हो होला स्ट्रेस हो कमती होला और पैसों वो बचेला नहीं चाहना जब रोपाई करवा तो चाहना बेचे हुए कि नहीं अपन खूब कंसोमाशों के तब इस सब से जब अपन आगे के आदमी जब देखबा तब जाथा रंग सा कान में काम करे तो हो जा से भाजी उठैले आवल रंग सा मालबा के भाजी कौन कौन भाजी तो ये सब चीज़ नहीं किन था रंग सा तब उन लोग के अपन बचत करे में जस्ती सहायता मिले अब तक देखला सा सब चीज़ किनाला सब चीज़ आदमी लोग जाला किने कारी पुलुए वो जा रंग सा किने
1: हाँ ये बेचे जा
2: हाँ तब बेचे के जे बेचे ला वो तो बेचबे करी तू जा तो के चाहना जाने के कैसे खरीदारी करब का चाहना किने के का नहीं चाहना किने के सकब एगो जैसे एगो पौती बाती तो हाँ बोलवा हाँ हाँ थोड़ा जस्ती किन ले रहा है महीना तो हो महीना थोड़ा जस्ती बजट के ध्यान में रख के खरीदारी करे के तो लालिस ए पोतो आगे आगे के आदमी हमार माँ बोले कौन है राशियों आगे सब कोई लगे एगो कौन है राशियों रहल तब कौन है राशियों में लिखा था रंग सा हर महीना के का ले ली हाँ है ऑम्प्लीस बातें तो हर महीना के नहीं ले तब तीसरा महीना में देखब कौन चीज़ बचल बा कौन चीज़ नहीं बा तब फिर से लालिस करब तब जब कि नहीं अब तो आदमी लोग लालिस नहीं करे रंग सा जैसे भाई जी बोला था लेता हुए नहीं बातें ये सब लालिस करे के तो जा रंग सा सुपर मार्शे में दूगो चीज किने के दस गो बारह गो चीज उठा के चलाओ रंग सा तो इस सबसे लोग के बीच से डिस्टर्ब हो जाला यही से बोले पैसा नहीं बचेगा
0: जैसे बोला लेगीम के फ्री का है मोहते होला बस की प्लांटे एक दिन कम थी होगा अब सब हम लोग बीओ में काम करेला तब कम थी होगा नुमा जब एक इजाफा कम थी होला और डिमांड जैसे है तब फ्री मोहते होला तो हवे का आदमी को अंकुराज के ना एक जैसे चीचे लेगीम फैन प्लांटे के जाए ना आदमी के लेता नहीं मिला तो चुजू पा जाए ऑक्यूपेशन रही एगो एगो हॉबी रही प्लांटे के तो ऐसे कर बता मोरी सब चीज़ में दीपान होला है पोताशो में ना जैसे फ्री तो मोहते भी करी मोहते भी करी जब एक आदमी अपन देखा लेगीम आगे लेगीम हम जाए ना ढेर कमती रहल अब तक ढेर मोहते करवा थोड़ा सीफा मोहते हुआ का है जब प्लांटे नहीं बा कोई लाते में काम कर होता सब कोई बीहो में करता तब और ढेर को बीहो में करता कमती आदमी पहुँचता था कुलता कम थी बा तब फिर तो मोहते होता तो हर आदमी को बोला लेगीम क्या है मोहतला लेगीम कंथोले नहीं है जब बोला सर लेगीम कंथोले नहीं है तो हर फिर मोहते होला डाक के तो कबो पानी आओला कबो घमा रहेला कबो देबोदमा रहेला तब फिर वन अफेक्ट करेला तो हर का दिन हर में हर बोला कि बीजवा ऐ पोता सब चीज में
1: तो आज की जो युवा पीढ़ी को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो लोग कैसे लेवल आंसर कैसे आपके देखे में वो लोग कैसे
0: जैसे जैसे तालबा बोली लड़का लोग अपन पाहों के देखे ला कैसे करते हैं सर कम छोटा हो सर तो वो लाज आवे लंग सर जैसे जाना सर सब युवा पीढ़ी सब कोई सोशल मीडिया में होता ऑनलाइन शॉपिंग करे लंग सर कैसे तो उनके छाना कहूँ से पैसा मिल गया था कि तो पापा पाहों ने कुछ खेला उनके को कौन खोल दे बेला ओके पैसा लाग सर बोलो वो लोग पैसा लेके सब चीज़ किनार करे लंग सर कहूँ तो हर लोग वो कौन थोड़े वो लोग नहीं जाना कुछ है बजटिंग कुछ है वो लोग जिस इम्पल्स कह रहे सर हाई ट्रेन बा हाउ ट्रेन बा तो है कि हिला सब तो हमें पाऊँ के वो कुछ कह रहा है कॉल के पैसा नहीं दिया जाए जो अपन हाई पॉकेट मनी है जो हर चीज़ किन अब आज के अलग अलग तैनी सुन कैसे बोलते हैं इम्पल्सिव बन सब हाँ जा पाया चाहे हम कि नहीं देवे तो पाऊँ तो ए प्लस कुछ ठीक दे फिर तो पैसा लेला जो किन है जाफा तो है कि कैसे बोलते हैं हाई अफेक्टिव करेगा वो लोग के फासों को

0: किने जाने से लोग नहीं जाते कौन चीज कौन चीज कौन चीज इन्वॉल्वमेंट रख रहे किने खे कि खोजी खातिर तो भाई ऑनलाइन जब कहे लग सा तो पफा ऑनक में हिल जाऊँ सा ना तो उल्क नहीं जाए लग सा हाई आदमी लोग से बोल सा कि देखे कि सब चीज़ नहीं जाके उठा के चलावा ऑनलाइन बेचाता कि ना थी तो हाई खातिर युवा पीढ़ी लोग के उल्ल के चाहे ना जाने कैसे अपन कैसे पाहो उल्ल के चाहे ऐसा कर लड़का लोग के कैसे को कुमार प्रॉब्लम होला तो आज के लड़का चाहे ना कैसे ना उल्ल अपने पर अपन ओपिनियन ओपिनियन
1: फॉर्म के लिए सा अपन अभिभावक की तो आप लोग देने से कोनो सब बक मजा कुछ करे उल्ल के चाहे ना किस पाले कुलवे में
0: नहीं आगे में आगे हाल ही में लिकुल में जाती सर कंज्यूमर एजुकेशन करे अब जब मान एफ मास्टर जे साइंस नेशनल कैंपेन करे लड़का लोग के लिकुल में सेतु बन फोम से का लाओ और फोम तो फोम जी फोम तो होला कर रहे सर लिकुल में कर रहे सर बोल रहे सर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बोल रहे हैं सर उन्हें लड़का लोग बोला हाँ लोग ऑनलाइन खुल बा उनके फौजी किन्नर से नहीं मिलवा पफा भाई किन्नर से नहीं अच्छा बा नहीं आते कुछ ना करके लोग दुआ भी नहीं आएंगे कुछ एगो पोता किन्नर से नहीं आया सब पोता बा ट्विटी तक चाहे लालवा बा पोते से बनाए के गाँव छी मैं लोग नहीं जाए सर तो फिर कहीं लोग किने लग से दाप गए लोग के ग्रुप एगो ग्रुप है ग्रुप के प्रेशर में ए हाई किन हाई किन लोग नहीं लग नहीं जा रहे नहीं भी जावा लोग से प्रेशर में किन देवे सर तो फिर प्रॉब्लम आप गए
1: तो वही हम लोग ये जानना चाहेंगे हमारे जितने श्रोता दर्शक हम लोग की सुन रहे हैं उन लोगों के जो बजट कैसे होला उन लोग के अनुभवी हवन सा तो आप लोग कौन चीज बोलवा उन लोग कैसे कैसे अभी ये भाई जी बोला कि साले सब कोई के बराबर नहीं है तो कोनो सुझाव
0: जैसे जैसे जैसे सुपर मौसम जाना सा वो कहते दूध की ना सर तब जाना सर देखे सा दूध मोथ खुलवा तो कोई और चिनाची बा कुछ सर उसका काम उसका दाम कम थी बा बजट के हिसाब से तो हाई से कहीं से हाई पहुँचवा वह गाँव गाँव में पाँच नहीं चला भागे की मैं तेरे को और चिनाची खोजे कि नहीं मैं तेने चला कि नहीं क्या बस तो बीजे के हिसाब से एडजस्ट करके चाहे ला देखे कि हाई पहुँचवा सही कह सर सर क्या सही कही था जैसे बोला सर ऐसे ऐसे दे आदुपटी ऐसे कहे तो आदुपटी कहीं पहुँच जाते ओके हाई पहुँचा तो कम थी मिला पा एक मैंने प्रमोशन सब रहेला सर अभी ने पहुँचा प्रमोशन किन के रख दिया हमको प्रमोशन नहीं मिली जहाँ जाने की कौन फौजी में किने तुम सर देखो सर फौजी की एक्सपायर की डेट देखे कि चाहे ला एक्सपायर को फौजी ले छे आप फौजी ढीले के दूध के जैसे पहले को फौजी किन के रख दे आप एक्सपायर एक समय में तब प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बीजे चलाए देखिए चाहे कौन फौजी में कौन सेवी रहा हरूद की जैसी कैसे लेका को लेकर जाला सिपा फोमा जाए रंग सा सिपा बर्गर जाए रंग सब जहाँ चाहे देखे कि कौन सी किनारे तुम कौन सी इस्पारी है उसके हिसाब से करके वो फौजी सब किन के रख दे वो कहीं इस्पारी दे तो नहीं लंबा है तो रख दे बस सेवी के हाँ महीना नहीं किन है तो बीजे में आज से जला
1: तब एगो प्लान जरूरी है करे के कौन चीज बोल
2: सब चीज में एगो प्लान जरूरी है देखे के चाहे ला कुछ चाहे ला किने के आगे और ये प्रमोशन जैसे भाजी बोलक प्रमोशन वो देखे के चाहे ला फौजी को मिस्टिप जैसे बोले सा खान पान के फौजी में जैसी आतंशों करे के चाहे ला बस ये सब में एगो एक्सपायरी डेट बा नहीं सकब एक से आगे सेवी करे लेकिन दूसर तरफ जैसे लेका लोग की काये बा देख बा प्रमोशन बाते तो कायवा थोड़ा किन के ज़्यादा रख दे तो भर बरिस मिली सेवी करे के चाहे ना जाने के का किनब काहे किनत हो और अब कोनो चीज़ किन लेब कबो नहीं सेवी करत हो तो एगो वेस्ट ऑफ मनी हो गल पैसा बेकार में चल गल इस सब चीज़वन के ध्यान में रख के निमन से एगो बजट करब एगो प्लान करब एगो लालिश करब तो लाफे जुम्मा देखब तोहर लाफे जुम्मा निमन से पासे होल
1: और कल जैसे शुरू शुरू में मैंने कहा कि 15 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं तो एक दो शब्द इसके ऊपर
2: परिवार सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इम्पोर्टेंट जहाँ देखबा तो परिवार जहाँ टूटल परिवार बाते तो बहुत प्रॉब्लम होला देखबा लड़का लोग लेकुल नहीं जाता लेकुल छोड़ दे होता बुनेर उबे जैसे बोलेंगे सर लेकुल कापे होता इस सब में ये सब स्टैटिस्टिक दिखावेला कि टूटल परिवार में ये सब प्रॉब्लम जस्ती होला तो जी के एगो परिवार जब इनी है माँ बाप लड़का लोग माँ बाप के सुनत हो माँ बाप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन फुलफिल करत हो निमन से बड़ा आदमी लोग के निमन से देखत हो माँ थेते नहीं करो सा ये सब चीज़ लड़का लोग सीखेला जब वो लोगों बड़ा होला तब पारे करेंगे सर तो हमार विचार में माँ बाप एक इम्पोर्टेंट फीचर है एगो फैमिली में जैसे जैसे माँ बाप करी वैसे वैसे

0: लड़का लोग स्वीप करी और माँ बाप के बीच तनाव रहेला तो लड़कों पर असर पड़ेगा दिखलें तो लौकेला स्टैटिस्टिक में देखना लड़का लोग के लेजिकासों अफेक्टे होला इस सब चीज तो हमार विचार में परिवार के इन्हीं चाहना रहे के।
1: और भाई जी दो शब्द अंत में क्या बोल बा हमने की फैमिली बच जाता
2: हो फैमिली एगो एगो एगो एजेंट है एगो इंस्टीट्यूशन है कि प्रीमियर लड़का के एलवे के हमें भी फैमिली सोशलाइजेशन से बोला सा हमें भी होला लड़का दिखला कुछ ना करके जब हमने जैसे फैमिली वही तो प्रीमियर कौन से माते जाती था जब सब चीज़ जैसे खान पान इलेक्ट्रिकल राफेल सब चीज़ किनी लग सा तब कुछ होला जब हमने कौन से माते के फुटेज कहला सा तो अंदर को फैमिली फुटेज ला ऐसे हिसाब आवेला संगे जब उनके हिसाब फुटेज के ला सा तब कंस्यूमर प्रोटेक्शन दाई ला सा तब उनके बीजे फुटेज होला जाइन से कुछ ना करके तब फैमिली में वो कल माजा है वो मुन्नी रहेला प्रॉब्लम नहीं होला प्रॉब्लम नहीं होला कोई फिनेंशियल बस फिनेंशियल को ग्रांड अफेयर पू फैमिली होले करके
1: बिल्कुल
2: दिने रही तब प्रॉब्लम हो जाए लड़का के लिए कुल सर के लेसन से पे करे जमा अपन बिल सब से पे करे तब हाई तब जेरे कब निमन से तो कल महीना निकल जला पैसा सब लग जला सब फिजिकल जा पे।
1: आज की चर्चा इस प्रोग्राम से हमें ये समझने का अवसर मिला कि सही बजट नियंत्रित खर्च और समझदारी से लिया गया तो आर्थिक निर्णय परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बना देता है। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी और श्री रणवीर सिंह मितू जी, आपकी इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत, जिम्मेदार और खुशहाल बनाएंगे। तो याद रखिए परिवार की सबसे बड़ी पूंजी आपसी विश्वास और समझदारी से होती है। तो ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। कादेर, शिव, दीपशिखा और रितेश को धन्यवाद देते हुए और आप सभी श्रोताओं जो हमने सुना, भाग लिया, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार और आदाब।

0: चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा जी। नमस्कार।
1: नमस्कार दिलमनी, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर अब्राहम गुलाम और केन्या के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को ये दर्शाती है, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इंडेंचर्ड लेबरहुड कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में लगाया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडेंचर्ड लेबरहुड प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है, जिसका सचिवालय मॉरिशस में है। इस परियोजना का मकसद दुनिया के गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। विदेश में दो महीने से खाड़ी में फंसा चीन का एक विशाल तेल टैंकर होर्मुज़ स्ट्रेट से निकल गया है। ये टैंकर 20 लाख बैरल इराकी कच्चे तेल के साथ फंसा हुआ था और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में क्रूज जहाज पर संभावित पेट संक्रमण के मामले सामने आने के बाद करीब 1700 यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक कई यात्रियों में गास्ट्रोएंटेराइटिस जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रामावतार लेन इजी रोज में 40 साल के 40-year-old श्री यावीश शर्मा रामावतार, जो यावीश से जाने जाते थे और पहले एमबीसी के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी माँ श्रीमती मित्रा ने रामावतार के मकान रामावतार लेन इजी रोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए इजी रोज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। गुटवायाल कथोसेर में 69 साल के 69-year-old श्री गौकरण जांगी जो माओ से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान गुटवायाल कथोसेर से उठाकर दाह संस्कार के लिए डिफ्रिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: एट 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: दस बजकर चार मिनट हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं आपका हार्दिक अभिवादन करती है। कार्यक्रम है भक्ति धारा। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक का हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। आपको पता ही है उन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है ताकि कार्य बिना किसी बाधा से सफल हो सके। और भगवान गणेश जो है हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है। ये प्यारा सा भक्ति गान अनूप जलोटा के स्वर में आप सुन पाएंगे।

श्रोताओं, गुरुवार का दिन है आज और आज का शुभ दिन समर्पित है भगवान हरि विष्णु को, साथ में माँ लक्ष्मी को भी। आपको पता ही है भगवान विष्णु का कार्य है कि वे संसार में अच्छाई को बनाए रखे, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे अलग अलग अवतार लेकर धर्म की स्थापना करती है। उनके प्रमुख अवतारों में से एक है राम और कृष्ण। ये दोनों नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में। तो चलिए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में भगवान हरि विष्णु पर आधारित।

श्रोताओं, भगवान हरि विष्णु का संदेश है कि जीवन में धैर्य, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। जहां विष्णु जी की कृपा होती है, वहां जीवन में संतुलन, सुख अपने आप आ जाता है।

श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भक्ति धारा। हम बात कर रहे हैं भगवान हरि विष्णु का और उनका एक अवतार है कृष्ण का। जहाँ कृष्ण का नाम होता है वहाँ पर प्रेम, शांति और आनंद का वास होता है। वृंदावन की लीलाएं उनके प्रेम और सरलता को दर्शाती है। और श्रोताओं, कृष्ण के जीवन से हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सही मार्ग और सही कर्म हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बना देती है। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान भगवान कृष्ण पर आधारित।

श्रोताओं, कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। उनकी बांसुरी की मधुर धुन मन को शांति और आनंद देती है। कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने ये सिखाया कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हुए। तो चलिए, भक्तिधारा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

10:40 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में शुटाओ। हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम और हरे विष्णु का एक बहुत ही प्यारा सा अवतार है, वो है राम का। और उनका जीवन त्याग, प्रेम और धैर्य की मिसाल है। वनवास के समय भी उन्होंने संयम और मर्यादा नहीं छोड़ी, इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उनका जीवन सत्य, धर्म और आदर्शों का सुंदर उदाहरण है। तो चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपके नाम हम करने वाले हैं,

श्रोताओं, जहाँ साईं का नाम होता है वहाँ पर उम्मीद का प्रकाश फैल जाता है। साईं बाबा जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर हर किसी की मदद करते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को शांति और विश्वास देती है।

श्रोताओं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ भक्ति धारा इस कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करेंगे। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इशारा कर दें कि कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, शुभ दिन की कामना हम करते हैं और ये प्यारा सा अंतिम नजाना जो है, एक आरती जो है, अनूप जलोटा के स्वर में आप सुन पाएंगे।

0: सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फौज शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती हैं, जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। काजिनो एम्प्लॉयीज़ यूनियन का कहना है कि मॉरिशस में काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार ज़्यादा कठिन बना रही हैं। विदेशीय स्तर पर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता

0: से पहले कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान। इसके जवाब में ट्रंप ने शी जिनपिंग को महानेता बताया और कहा कि दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होंगे और उन्होंने शिखर वार्ता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन पर चीन ने मानवाधिकार आलोचना के कारण प्रतिबंध लगाया था, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चीन पहुंचे हैं और दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत से डराने वाला अमेरिका अब खुद भारी संकट में फंसता दिख रहा है। पहली बार अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रासोइलेन वैपियरो डी ट्रियोले में 66 साल के 66-year-old जनाब अबू बकर नियामत जो आशिक से जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रासोइलेन वैपियरो डी ट्रियोले से निकाल कर दफनाने के लिए प्लेंडे पपाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेथ 2:30 PM। रॉयल रोड पेलग्रें सिबास्तोपोल में 50 साल की 50-year-old श्री रामजीत जुगोरू जो जॉन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेलग्रें सिबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए पेलग्रें की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे 2:00 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल से मेघ निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है।

और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो दो पांव पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।

और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगंबर इनका कजिया चुका दें, तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है और अगर इनको हक मिलता हो तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है।

मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो इनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने

वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं।

और ये अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है।

कह दो कि अल्लाह की फरमा बरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो, अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है, और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे, और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है।

जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम उपायदार करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं।

और नमाज पढ़ते रहो और जकात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मغلوب कर देंगे, उनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है।

और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता है जानता है।

न तो अंधे पर कुछ गुना है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।

मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही

ईमान रखती हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो, और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और अल्लाह हर
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अन्नूर की तिलावत बमय उर्दू तर्जुमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। करो इब्तिदा जब किसी काम की, रखो याद दिल में उसी नाम की, जुबान से कहो वो खुदा एक है, यकीन जान लो वो खुदा एक है। मेरा वो खुदा है बड़ा बेनियाज, हर एक काम का है वही कारसाज। किसी का भी लोगों ना वो बाप है, जो बेटा किसी का ना वो आप है, नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, वही सारे आलम का है बादशाह। करो इब्तिदा जब किसी काम की, रखो याद दिल में उसी नाम की।

अपनी आँखों से मदीने का समा देखते हैं, कितने खुशबख्त हैं जो उनका जहां देखते हैं। मुझको मालूम है एक दिन वो बुलाएंगे ज़रूर, मुझको मालूम है एक दिन वो बुलाएंगे ज़रूर, आला अदना मेरे आका जी कहां देखते हैं। मौज़ सामईन, हज और उम्रा, जितने भी लोग इस खुश नसीब इस वक्त हज की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम इबादात को कबूल फरमाए और इस अजीम सफ़र की बरकतों से नवाजे और आपकी ज़िंदगी को नूरे ईमान से भर दे।

हर मुसलमान की यही आरज़ू होती है कि काश एक बार दीदारे रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो। ऐ अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हज की सआदत नसीब फरमा, और जितने भी खुश नसीबों का इस साल बुलावा आया है उन्हें हज मबरूर अता फरमा। आमीन।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:38 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है, मई की आज 14 तारीख है और माह ज़िलक़द की आज 25 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात भेज सकते हैं।

मौजूद अमीन, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। शबनीस, जी हाँ वालदा शबनीस, अपनी मरहूमा बेटी कनीज सकीना अम्बिदेसी के लिए ढेर सारा प्यार भेज रही हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक शबनीस को सब्र जमील अता फरमाए। इसके अलावा दागुचिया से अमीरा अपनी दादी हबीबा अंजुलिया के लिए बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं और वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी दादी हबीबा को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और वाकवा से नसरीन भी हमें पैगाम भेज रही हैं, वो हमेशा की तरह हमें सुनना बहुत पसंद करती हैं और ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। कालू अब्दुल हमीद जुम्मन, जिनके इंतकाल को आज 40 दिन हुए हैं। इसके अलावा वो जितने भी खुश नसीब जो हज पर जा रहे हैं या चले गए हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन सबको हज मबरूर अता फरमाए। इसके अलावा ईसा सुबानी और उनकी पूरी फैमिली पोर्ट लुइस से तमाम हज पर जाने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों को हज मबरूर अता फरमाए। तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश भी कर रहे हैं और तमाम मरीजों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रहे हैं ईसा सुबानी और उनकी फैमिली। इसके अलावा ईसा अलैहि सवाब की गुजारिश की गई है मरहूम महमूद इकबाल जियन के लिए, जिनकी आज

तीसरी, जी हाँ तीसरी बरसी है और ये गुजारिश की है जीवन रुगी लाल मोहम्मद फैमिली जो के मिनिल की रहने वाले हैं। इसके अलावा जी हाँ बंधु और कुरमाली फैमिलीज जो कि त्रियो लेके रहने वाले हैं, तमाम हज पर जाने वालों को हज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और नासिर और नाजमा महबूब जो कि नूत कदाम के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक कलाम की फरमाइश की थी।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 14 मई, घड़ी मिला लीजिए 3:15 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर हम भी आ गए हैं आपका साथ देने के लिए, आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर। चलिए, दोपहर का वक्त है, अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है ना। कैसे है आप सभी? गर्मी का मौसम है, कभी कभार शाम के वक्त ठंड हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है। बदलते मौसम में उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी या तो हमें कॉल करें या तो अपने मैसेजेस भेजें 4028085 या तो 5251700 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में अपने पसंदीदा गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 4 बजे तक चलेगा यह प्रोग्राम, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। आंधी फिल्म से लिया गया लता जी और किशोर दा की आवाज़ों में।

एक्चुअली ज़िंदगी के किसी भी मोड़ से आप क्यों न जा रहे हो, बस हमसे टकरा रहे हैं, आपकी जो फरमाइशें हैं हम तक आ रही हैं, आपके डेडिकेशंस हम तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है यहाँ पर शुरू हो चुका है आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, और चलिए बढ़ते हैं इस गाने की ओर। कब्ज़ा फिल्म का ये जो तराना है, ए मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, ये गाना जो है जाता है सभी बंधु फैमिली के नाम जो ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं। यूनियन पार्क से ज्योति है जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, यही गाना प्रीति जी, ज्योति जी, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और यूनियन पार्क के आपके पूरे परिवार के लिए।

0: जी हाँ, कहते हैं ना, जब हम औरों का भला चाहते हैं तो हमारा भी भला कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो चलिए, सबकी भलाई की, सबकी अच्छाई की कामना करते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। मर्यादा फिल्म का ये जो अगला तराना है, मुकेश साहब की आवाज़ में जाता है। विद्या जी, आपके नाम, आपकी चाची कुमारी के लिए, बहन सती के लिए, सुरेखा है, बबीता है और सभी फैमिलीज के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं।
1: आपकी पसंद।
0: और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार और आदाब। सर्कुलर रिसाइकलिंग इकोनॉमी के संदर्भ में DKD प्लास्टिक पाइप्स उद्योग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में खासियत रखता है और आज ये इलाकाई स्तर पर पहुंच गया है। हिंद महासागर आयोग की एक्सप्लोआ परियोजना के संदर्भ में एक पहल के तहत ये उद्योग प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष करता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए वो इलाकाई सतह तक पहुंच गया है। रियांबेल के एक बंगले में रोज़ बेल की आज सुनी कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज़्यादा कुकीन को जब्त किया और कल बंगले की तलाशी भी ली गई और मालकिन जयंती देवी जगरू को गिरफ्तार किया गया। उसकी उम्र 41 साल की है। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है। एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया। कुकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करे। विदेश में मध्य पूर्व की जंग के चलते पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि नोट की जा रही है। इस बीच भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली ने ऐलान किया कि वो सोना चांदी और प्लैटिनम पर टैक्स की कीमत को बढ़ा रहा है। इसका मकसद विदेशी मुद्राओं के रिजर्व की रक्षा करना है और व्यापारिक घाटे को कम करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। नंबर 28, नंबर 28 डॉक्टर हसन साकिया लेन रुजहिल में 94 साल की 94 years old बीबी जुबेदा सुब्राची पैदाइशी नाम चमन इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज तीन बजे इनके घर डॉक्टर हसन साकिया लेन रुजहिल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जोगुरु जो जों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेलघा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
3: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद। चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3:03 हो रहे हैं और फरमाइशें तो इतनी हैं कि क्या कहें। और आज ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सुनने वाले अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में सभी जन्मदिन की शुभकामनाओं को सभी नामों को हम जोड़ेंगे। अभी के लिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। जंजीर

फिल्म का ये जो गाना है यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, इस खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट डीप रिवर से शिवरानी जी की ओर से आई है। शिवरानी जी ने ये गाना खास कर अपने समधी और समधिन के लिए मांगा है, सभी जगन्नाथ परिवार के नाम, दामिनी है, प्रकाश है, गोपी है, सुजाता है और साथ में आहान है, आहाना है, आलिशा है, सभी के नाम जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं।

हम सफर हम राज हों, ता कयामत

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, ये तो हम भी मानते हैं, दोस्तों के बिना, अच्छे सहेलियों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, इसलिए अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, वो भी ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि सभी बातें हम सभी से कह नहीं पाते हैं, कोई ऐसा दोस्त या कोई बचपन का दोस्त, कोई अच्छा साथी हो जिससे बिना झिझक सारी बातें कहना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। नोवेल फ्रांस से कुलेन जी हमारा साथ दे रहे हैं, विधाता फिल्म का ये जो अगला तराना है, हाथों की चंद लकीरों का, इस गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, और ये गाना इनकी ओर से इनके सभी प्यारे दोस्तों के नाम।

आपकी पसंद। और चलिए यहाँ पर देखते ही देखते 3:16 हो चुके हैं। तो जितने भी हमारे सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं या आपके परिवार के सदस्य अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है जन्मदिन नीता खेदनी का, जो सेंट जूलिया रहती है। नीता जी जो है 76 ईयर्स की हो रही है। तो नीता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, खासकर आपकी बेटी रूमा जीता की ओर से, सभी जीता परिवार, सभी खेदनी परिवारों की ओर से, सभी बेटियों की ओर से, सभी दामाद और सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस की ओर से नीता जी, आपको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और यहाँ पर विहा पदारत जो है 5 साल की हो रही है। आपको भी बेस्ट विशेस विहा, खासकर पापा जेविन की ओर से, मामा श्यामा की ओर से, फूफू नीलम, दादा आनंद, दादी नंदा, सभी पदारत परिवारों की ओर से विहा, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर आज ही जन्मदिन है लक्ष्मी तिलकधारी जी का, जो 63 ईयर्स की हो रही है। लक्ष्मी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी बेटी दिया, बेटा नीलेश, साथ में है दीक्षा, नाती है आरव, आयान, कवि, युवराज, कृष्टि, रानी, चेष्विका, तुलसी परिवार की ओर से आपको जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, MBC रेडियो की ओर से, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑब्वियसली जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है सभी के लिए, तो बस खुशियों के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ ये जन्मदिन आप बिताए, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। और ये गाना उन सभी के नाम जिनका भी बर्थडे है आज।

और इसी के साथ बढ़ेंगे हम इस अगले गाने की ओर। दिल अपना और प्रीत पनाई फिल्म का ये जो टाइटल ट्रैक है लता जी की आवाज़ में जाता है यहाँ पर अनसुया जी, अनसुया राम खिलावन जी आपके नाम, जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिए ये गाना हो जाए उनके सभी बहनों के लिए, खासकर प्रेमिला सी गुलाम जी आपके नाम, रागिनी है, साधना है, नाती है याना, सभी राम खिलावन परिवार, सभी सी गुलाम परिवार और जितने भी सुनने वाले जिन्हें ये गाना पसंद है दिल अपना और प्रीत पनाई का, ये गाना आप सभी के लिए भी। तो भूलिएगा नहीं 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700 पर।

आपकी पसंद। चलो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं। तो ये जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं, हम साथ साथ है फिल्म से लिया गया, ये तो सच है कि भगवान है। ये गाना हमारे सुनने वालों को बहुत ही पसंद है। आए दिन इस गाने की फरमाइश होते रहती है, बहुत से लोग इस गाने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए ये गाना साधना जी रिवेदे क्रोयल से हमारा साथ दे रही है। ये गाना आपके नाम जाता है, आपकी ओर से सभी जीवन फैमिलीज़ के लिए और उन सभी के नाम जो भी इस

गाने को सुनना पसंद करते हैं। और चलिए यहाँ पर इसी के साथ यही गाना जो है हम यहाँ पर करेंगे आपके लिए भी। हमारे साथ सुदेवी जी साथ दे रही है, कह रही कि अगले गाने में इनके पूरे परिवार का नाम जोड़ दिया जाए। तो बिल्कुल सुदेवी जी, अगला गाना जो है आपके नाम, आपकी दीदी ललिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज़ के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालिंगा, विकास, अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, कृषिका, लक्षिका, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू फैमिलीज़ के नाम ये गाना हम करते हैं आपकी ओर से। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि एक ही नाम को हर रोज़ लिया जाता है। बात ऐसी है कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दे। तो जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है हम उनका नाम जोड़ देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग लगभग रोज़ ही मैसेज करते हैं, सुबह भी मैसेज करते हैं, दोपहर में हम काम करते हैं तभी भी मैसेज आता है, रात में काम करते हैं तभी भी मैसेज आता है। तो जब हमें लोगों के नाम मिलते हैं, डेडिकेशन मिलते हैं, तो हमारा तो काम है सभी के नामों को जोड़ना, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि सभी की फरमाइशों को हम पूरा कर पाए। तो ऐसे में ये जो अगला गाना है आप सभी के नाम जाता है, उनके लिए भी जो कभी फ़ोन नहीं करते हैं लेकिन बड़े ही प्यार से रेडियो के ज़रिए साथ देते रहते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए आफिस जी लावेनिया से हमारे साथ जुड़ी हैं और ये जो अगला तराना है आफिस जी की ओर से, वो अपने शौहर को याद करते हुए इस गाने की मांग उन्होंने की है। तो आफिस जी, ये गाना हम आपके लिए करते हैं। इस समय शातो बनारस से ज्योति जी हमारा साथ दे रही है। अगला गाना ज्योति जी आपके नाम, आशा आशनी के नाम, रेखा है, सुरेखा है, सभी मदब फैमिलीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। तो चलिए ये गाना आप सभी के लिए लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए पसंदीदा गीतों के इस प्रोग्राम में आपका साथ हमें मिल रहा है, बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। अगला जो तराना है, जैबुन जी आपके नाम हम करते हैं आपके शौहर कासम के लिए, आपके बेटे, आपके बहुओं के नाम, सभी नाती पोतों के नाम और सभी बिहारी परिवार जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। वो दिन याद करो फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए। यही गाना ग्राउंड ग्रुप की सुनीता जी आपके लिए भी हम करते हैं, बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुक्रिया।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए कुछ खूबसूरत गानों को हम याद कर रहे हैं, इन तरानों को याद कर रहे हैं, आपकी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं। और अगला गाना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये जो खूबसूरत सा तराना है, जाता है ये गाना, इनफैक्ट जिसने मांगा है उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा। पर अगर आप हमें सुन रहे हैं और ये गाना हम आपके लिए चला रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आप कौन हैं, कहां से हमें सुन रहे हैं, तो हमें भी पता चलेगा इतने खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट किसकी ओर से आई है। यही गाना विश्वानी जी आपके नाम हम करते हैं, हर रोज़ हमारा साथ देती है वाकवा से। अगला गाना, यही गाना जो है आपके नाम, आपकी बहनों के नाम, इंदिरा है, शारदा है, सहेली है, नीला है, प्रतिभा, शोभा, गीता गजाधर, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। विद्या जी हमारा साथ दे रही है, आपको भी हम नहीं भूले हैं। लीला जी बॉशेरी से हमेशा हमारा साथ देती है, तो यही गाना आपके लिए भी। और ये गाना जिसने मांगा है, अगर वो हमें सुन रहे हैं, तो बताइए कि आप कौन हैं, कहां से हमारा साथ दे रहे हैं।

0: की पसंद।
1: और चलिए आपकी पसंद में अब बारी है इस आखिरी गाने की। जी हाँ, अभी अभी मानो इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हुई थी आपकी पसंद, और देखते ही देखते ख़त्म होने को चला। जाते जाते ये आखिरी गाना खामोशी फिल्म का वो शाम कुछ अजीब थी, रिहाना जी आपके नाम जाता है, फिनिक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभी भी ढेर सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं इस समय हमारे साथ। अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से साथ दे रही हैं, कह रही है ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और सभी को जो है अगले गाना सभी के नाम वो डेडिकेट कर रही है। जाते जाते यही गाना हम आपके लिए भी करते हैं, आप है अमीना जी, और

अमीना जी आपकी ओर से गाना जाता है आपके दो भाइयों के नाम, दो भाभियों के नाम, बहनों के लिए नेफ्यू है, नीसेस है और सभी आपके रिश्तेदारों के लिए। और चलिए जितने भी सुनने वाले हमारे साथ जुड़े रहे इस प्रोग्राम में, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टिकटॉक पर परी हमारा साथ दे रही है जो हमेशा हमारे टिकटॉक लाइव से भी जुड़ती है, तो परी जी ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं। जितने भी टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इसी गाने के साथ आपकी पसंद यह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और 4 बजे से भक्ति धारा इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। कौ मौसले कतको को NSLD, NHDC, चर्च लेन, दासान स्ट्रीट एवेन्यू, आजालिया हाई स्ट्रीट, बिलाव स्ट्रीट, कामेलिया एवेन्यू, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि कतकोको के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है। दोबारा सुन लीजिए इस विज्ञप्ति को। कौम मौसले और कतकोको के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, NSLD, NHDC, चर्च लेन, दासान स्ट्रीट एवेन्यू, आजालिया हाई स्ट्रीट, बिलाव स्ट्रीट, कामेलिया एवेन्यू, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि शुक्रवार, कल शुक्रवार 15 मई को सुबह के 8:45 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति CEB की ओर से।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: भक्ति सागर।
2: गुरुवार 14 मई, घड़ी मिला लीजिए, सपहर के 4 बज चुके हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर हम एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं और आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। तो अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम चलेगा। जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं हमारे, इस समय काम से घर की ओर लौटते हैं, रेडियो से जुड़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दिन अच्छे से बीता होगा और अभी से लेकर शाम भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे जीवन पर सदा बनी रहे। आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो आइए अभी के लिए भगवान गणेश और साई जी के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

0: तो चलिए भगवान गणेश और साई जी के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हमने किया और अभी के लिए भक्ति सागर इस प्रोग्राम में आइए अब हम सुनेंगे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी से।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में

आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, राजा दशरथ के चरित्र का गुणगान करते हुए महर्षि वाल्मीकि उन्हें न्याय का प्रतीक बताते हैं। वे कहते हैं कि न्याय करते समय राजा दशरथ एक आदर्श शासक की भांति पक्षपात रहित होते थे। ईर्ष्या, मोह और लालच से वे दूर होते थे। नीति कहती है कि तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणा भी वधते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते। राजा के कर्तव्य का उद्घाटन करते हुए श्लोक कहता है कि राजा को न्याय पूर्वक दंड का संचालन करना चाहिए। जो राजा न्याय पूर्वक दंड का प्रयोग करता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ावा देता है, और जो राजा विषय वासना में फंसकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलकर अन्यायपूर्वक दंड का प्रयोग करता है उस राजा को दंड देवता मार देता है। श्रोताओं, अयोध्या के महाराज दशरथ समदर्शी थे, पक्षपात रहित थे, सभी को बराबर समझते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा या अपना पराया नहीं था। उनकी प्रजा उनकी संतान के समान थी। वे सभी के साथ प्रेम पूर्वक और न्याय पूर्वक व्यवहार करते थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नास्ति को नानृति वापी न कश्चित बहुश्रुतः ना सूय को न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। यह श्लोक हमें बताता है कि अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। अयोध्या की प्रजा में कोई भी नास्तिक नहीं था। सब के सब परमात्मा को पिता मानकर उनसे प्रेम करते थे। कोई भी असत्य के मार्ग पर चलने वाला नहीं था। सभी बहुश्रोत थे, विद्वान थे, वेदों के और शास्त्रों के जानकार थे। दशरथ जी की प्रजा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समर्थ थी। श्रोताओं, रामायण की कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल के कुशल मंत्रियों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में जन्मे महाराज दशरथ के मुख्य रूप से 8 मंत्री थे और आठों के आठों मंत्री सर्वगुण संपन्न थे। विचार में वे निपुण थे और अपने राजा के इशारों पर कार्य करने वाले, सदा राज्य की भलाई चाहने वाले मंत्री थे। वे अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और परिश्रमी थे। धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये राजा दशरथ के 8 मंत्रियों के नाम थे। श्रोताओं, नीति शास्त्र कहता है कि मौलान शास्त्रविदः शूरान लब्ध लक्षान कुलोद भवान। श्लोक कहता है कि वही मंत्री देश का कल्याण कर सकता है जो स्वदेश में ही जन्मा हो और जो शास्त्रों को भली भांति जानने वाला हो, साथ ही जो साहसी और बहादुर हो। जो मंत्री अपने लक्ष्य से कभी भी न चूके, जो सदैव अपने उद्देश्य की पूर्ति में अड़ा रहे, जो कुलीन हो, उत्तम विचार वाला हो, जो सदा प्रजा के हित में निर्णय लेता हो, धार्मिक हो, बुद्धिमान हो, देशभक्त हो, वही सही रूप में मंत्री कहलाने योग्य होता है। श्रोताओं, मंत्रिमंडल की गठन करने से पहले महाराज दशरथ विधि पूर्वक

होने वाले मंत्रियों की कड़ी परीक्षा लेते थे और पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के बाद ही महाराज दशरथ सत्यवादी, वाक्पटु, मधुरभाषी, प्रतिभाशाली, सहनशील, पवित्र, स्वामी भक्त, स्वस्थ, द्वेष रहित, परिश्रमी, स्थिर मन वाले आप्त पुरुषों को मंत्री पद पर नियुक्त करते थे। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऋत्विजौ द्वावभि मतौ तस्यास ताम ऋषि सत्तमौ वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। मतलब कि उन आठ मंत्रियों के अतिरिक्त महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वामदेव और अन्य ऋषिगण भी मंत्री रूप में कार्यरत थे। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि महाराज दशरथ प्रतिक्षण अपनी बुद्धि के विकास में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे आचार्यों और गुरुजनों के साथ रहा करते थे। नीति भी यही कहती है श्रोताओं कि जिस प्रकार आचार्य के निर्देशन में शिष्य रहता है, पिता के निर्देशन में पुत्र रहता है, स्वामी के निर्देशन में सेवक रहता है, उसी प्रकार गुरुओं और ऋषियों के निर्देशन में प्रजा अनुशासन में रहकर राष्ट्र हित करता है। ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों विद्याओं को जानने वाले गुरु ही होते हैं। दंड नीति, न्याय विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत वशिष्ठ और वामदेव अयोध्या के मंत्रिमंडल के निर्णयकर्ताओं में थे। तभी अयोध्या की प्रजा में ऋषियों के गुण विद्यमान थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में कार्यरत मंत्रियों के गुणों को उजागर करते हुए महाकाव्यकार लिखते हैं कि विद्या विनिता ही मंतः कुशला नियतेन्द्रियः श्रीमंतश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः। यानी कि अयोध्या के मंत्रीगण विद्वान परंतु विनयशील, जितेंद्रिय और कार्यकुशल, धनी और महात्मा, यशस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी परंतु क्षमाशील थे। वे सदैव हंसकर बोलते थे। अयोध्या के मंत्री केवल अयोध्या की ही पूरी जानकारी नहीं रखते थे, बल्कि वे अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी रखते थे। कई योग्य और कर्तव्य परायण गुप्तचरों की सहायता से वे अपने राज्य और दूसरे राज्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करते थे। जिन विभागों का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाता था, उन विभागों के वे विशेषज्ञ तो थे ही, साथ में राज्य के अन्य विभागों के भी वे कुशल जानकार होते थे। ऐसे विवेकशील और व्यवहार कुशल थे श्री दशरथ के मंत्रीगण। श्रोताओं, राज्य का संचालन करना कोई साधारण काम नहीं होता है। इसके लिए राजा को अनेक योग्य और समर्थ मंत्रियों का सहयोग चाहिए होता है। मंत्रियों से मंत्रणा करके उनके विचारों और अभिप्रायों का विश्लेषण करके ही राजा दशरथ अयोध्या के राज्य, सेना, कोष आदि की रक्षा के लिए निर्भय होकर निर्णय लेते थे। श्रोता भाई बहनों, महाराज दशरथ एक आदर्श शासक थे। आधुनिक समय में उनके विचारों को अपनाकर सर्वत्र रामराज्य की स्थापना संभव हो सकती है। हमें रामायण का पठन पाठन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें सभी समस्याओं के समाधान हैं। रामायण की कथा को हम अगले कार्यक्रम में जारी रखेंगे श्रोताओं। अभी के लिए श्री कुमार रामा

तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति सागर के अंतर्गत कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी से। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और घड़ी मिला लीजिए 4:30 बज चुके हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। गुरुवार का दिन है, तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा साई जी की आराधना करते हैं, भगवान साई का ध्यान करते हैं।

श्रोताओ, भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं। कर्तव्यों का हमारे जीवन में बड़ा ही अहम स्थान होता है। व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अपने लिए ही जीने का नाम नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझना, अपने कर्तव्यों को निभाना भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। कर्तव्य जो हमारे अपनों के प्रति होता है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधियों के प्रति, वहीं पर कर्तव्य हमारे समाज के प्रति होता है, हमारे देश के प्रति होता है। और हर एक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में सफलता को अवश्य पाता है।

चले भक्ति सागर, इस कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले हम अपने कर्तव्यों पर बात कर रहे थे। कहते हैं सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने परिवार के प्रति होता है, माता पिता के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमारा पालन पोषण किया। हमारे बच्चों के प्रति होता है, जीवन साथी के प्रति होता है, और वहीं पर समाज के प्रति भी कर्तव्य अपना एक बहुत ही अहम महत्व रखता है। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर नियमों का पालन करना आ जाता है, दूसरों की मदद करना आ जाता है, हमारे आसपास की सफाई का ध्यान रखना आ जाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना आ जाता है। तो ये सारी बातें हमें सामाजिक प्राणी के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही आवश्यक होता है, और वहीं पर ईश्वर के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञ हृदय, क्योंकि ईश्वर जो है उन्होंने ही तो इस सृष्टि की रचना की है।

और जाते जाते बस यही कहेंगे, कुछ देर पहले हम कर्तव्यों पर बात कर रहे थे। कर्तव्य हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपनों के साथ, अपने समाज के प्रति, अपने देश और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर और उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो यह हमें अच्छा इंसान बनने के लिए अग्रसर तो करते ही है, साथ ही हमें सफलता की ओर भी ले जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस आरती के साथ हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। 5 बजे आप सदाबहार गीतों का प्रोग्राम जो है सुन पाएंगे पूनम की प्रस्तुति में। तो अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर आप हमेशा जुड़े रहिए हमारा साथ।

0: on the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: 819 kilohertz पर Radio Mauritius.
2: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं.
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्कार आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। शाम का ये वक्त जब कोई घर लौट रहा होता है, कोई रसोई में काम कर रहा होता है और कोई बस दिन भर की थकान उतारना चाहता है, तो अगले एक घंटे थोड़ा सा खुद को आराम दीजिए। सदाबहार गीतों के साथ मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कर सकते हैं आप अपने गाने और अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5251705 पर, और अपनी मोहब्बत भरी बात हमें लिख सकते हैं। किसी को अगर कोई मैसेज करना है या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है तो आप मुझे बता सकते हैं, जो कि हम एक घंटे में चला सकते हैं। पुराने गानों से शुरू करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे गाने 80s या 90s तक जाएंगे। एंजॉय कीजिए आपके प्यारे भरे गाने।
0: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो।

सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर। अगर आप इस वक्त दिन भर की थकान लेकर बैठे हैं तो सदाबहार गीतों के साथ आप जुड़ सकते हैं। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, हम पुराने गाने चला रहे हैं सिर्फ आपकी पसंद के। तो हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, माला जी कात्रबोन से, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है शोभा जी ने अपनी दोस्त राधा, जो मोचिदा में रहते हैं और नर्स

0: नसीर एंड नज़मा जी भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने भी एक फरमाइश किया है उस गाने की जो उनको बहुत पसंद है। चलिए भाई, तब तक हम इंजॉय करते हैं यही वाला गाना आपके सबकी पसंद का।
1: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:24 हो चुके हैं दोस्तों। ये टाइम ऐसा है ना, जो ये थर्सडे का दिन होता है, नहीं ये तो ना तो शुरुआत का दिन होता है हफ्ते का और ना एंडिंग का, बीच में थका देने वाला, एग्जॉस्टेड करने वाला डे होता है। और फिर भी इस टाइम अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जो सदाबहार गीतों का है, जो गाने कभी ख़त्म नहीं होते और आपकी यादों में कहीं ना कहीं बसे होते हैं, तो ये गाने वो चल रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इब्राहिम जी, विनीता जी, और जो कि ग्लेन पार्क से हैं और सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी बहन कह रही है उनको कि जितने हाथ तुम्हारे अच्छे हैं ना, मतलब तुम सबके दुख दूर कर देती हो अपनी मसाज करके या किसी भी तरीके से हील करके, उससे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा चेहरा भी है और उससे भी ज़्यादा अच्छा तुम्हारा दिल है। बस हमेशा ऐसे खुश रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो। थैंक यू उनकी बहन के लिए जिन्होंने इतना प्यारा सा मैसेज भेजा है। साथ में ललित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ USA से, उन्होंने भी एक गाने फरमाइश की है, एक प्यारे से गाने की। साथ में दिलीप जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़ते हुए बस यही कह रहे हैं कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं उनको। तो इंजॉय कीजिए आपकी पसंद के गाने, क्यों हो टेंशन लेनी किसी ज़िंदगी में किसी भी बात की। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:31 हो चुके हैं दोस्तों, और आप ये टाइम जो है ना, ये है आपका टाइम, और इस टाइम को यूटिलाइज़ करना, इसको यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आपने और 6-7-8 घंटे उठे रहना है, और बहुत सारे अभी भी लगातार काम कर रहे होंगे। कई लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, पोते पोतियों को देखना होता है, और उसके साथ में अपने गानों के साथ में मसरूफ़ रहना होता है। ये ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लगती है तब जब आपके गाने आपके पसंद के चल रहे हों। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं धानी जी, जो कि बॉशेरी से हैं, और वो बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रहे हैं। अनीता, करुणा, अमृता विश्वानी, धुमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रकाशवंती जी बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं साथ में, और उन्हें भी बहुत पसंद आ रहे हैं प्रोग्राम। श्यामा रघुनंदन जी, जिनको एक बहुत ही पुरानी मूवी का एक सॉन्ग सुनने का दिल कर रहा है, और वो बोल रही हैं कि मैं 83 ईयर्स की हूँ तब भी मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, और साथ में अगर मेरे टाइम का कोई गाना चला दें तो आपके पसंद का गाना इस समय हम चलाने जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए आप अपने गाने।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:41 हो चुके हैं दोस्तों, और ये टाइम जो है ना ऐसे भाग जाता है, एक घंटा पता ही नहीं चलता कि अभी तो हमने प्रोग्राम शुरू किया और अभी बस अंत की ओर आने को हो जाता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों को ये पुराने गाने पसंद होते हैं, बट हो सकता है जनरेशन जनरेशन का कुछ फ़र्क होता है। नए लोगों को, नए बच्चों को नए टाइम के गाने पसंद होते हैं, आपको कुछ लोगों को पुराने पसंद होते हैं, कुछ लोगों को मिडिल वाले 80s और 90s के पसंद होते हैं। पर मुझे लगता है जो संगीत है ना वो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट हो, बस सिर्फ समय बदल गया है और उस टाइम में ये गाने चलते हैं, अच्छे लगते हैं। पर हम आपकी पसंद के चलाते हैं इस समय, क्योंकि आपका ये टाइम है। और कई लोग इस टाइम अपनी ज़िंदगी में कुछ टेंशनों से गुजर रहे होते हैं, कुछ कईयों की ज़िंदगी में कोई बीमारी हो जाती है, कई लोग बेड पर होते हैं और उस टाइम उनके पुराने पसंद के गाने चल जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो आप बस जहाँ पर भी है अच्छे से पीजिए, अच्छे से खाइए, अपने घर में अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, कोई मुश्किल नहीं खड़ी होनी चाहिए। इंतज़ार करते हैं आप हमारे प्रोग्राम का, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स हमारे दिल को खुशी देते हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं मून जी, और जो उनके हस्बैंड हैं उनका नाम है चांद, एक तरफ से मून और दूसरा था चांद। मैं कहती हूँ मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों को जोड़ने का अगर किसी ने कोई सिरा बनाया है तो आप दोनों के साथ ही है। सो नाइस, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णावंती जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, निर्मला देवी जी जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने भी बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। तो बस आप सुनते रहिए अपने गाने और इन्जॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। अगर बेड पर हैं, कहीं पर भी हैं तो डांस भी कर सकते हैं। ये गाना आप सबके लिए।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: दोस्तों 5:53 हो चुके हैं इस टाइम, और ये उम्मीद है आज का ये साथ आपकी शाम को थोड़ा सा हल्का और खुशनुमा बना गया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, अब लेती हूँ इजाज़त। 6 बजे सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार। उसके साथ में ही अनीता जी रोज़ बेल से जुड़ी थी हमारे साथ, और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम के लिए और इन गानों के लिए। थैंक यू सो मच अनीता जी। साथ में देवानंद जी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, और जो भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने मैसेज किया या नहीं किया, कॉल किया या नहीं किया, बट आप सुन रहे थे इस प्रोग्राम को और इंजॉय कर रहे थे। बस आप इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा आदाब प्रणाम सब कुछ सलाम सब एक्सेप्ट कीजिएगा। और ये आखिरी गाना जिसमें आप खुश हो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब। ठीक 6 बजे हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस के ज्यादा कमजोर परिवारों को किस तरह पहचाना जाए, सोशल रजिस्टर में एक सुधार लाया जाएगा, समाज सुरक्षा मंत्रालय के तहत योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है। करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2000

0: चार में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई, जिसके जरिए पानी के गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम उठाए गए। ओसबेल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में पहली सर्जरी कामयाबी के साथ की गई। एक भाई ने अपने किडनी देकर अपनी बहन की जान बचाई। इस ऑपरेशन में दोनों मोर्शन और विदेशी डॉक्टरों की महारत रही है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत मुशरस्मी कीटनाशकों के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू। हुकूमत अपने साझेदारों को एकत्र कर रही है। और भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू। इसके पीछे वजह ये है, स्थानीय जरूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखना चाहिए। नमस्कार, आदाब। इस बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मुर्शस के ज़्यादा कमज़ोर परिवारों को किस तरह पहचाना जा सकता है, इनके लिए एक सोशल रजिस्टर है और अब इस रजिस्टर में सुधार लाया जा रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है ताकि ये परिवार सुविधाओं से लाभ उठा सकें और अपनी ज़िंदगी सहल तरीके से गुजार सके। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण पेश है।
1: गिरे हुए पर्दों के पीछे बिना सच जाने फैसला सुना देने वाले नजरों से दूर ऐसे परिवार भी हैं जो खामोशी में बेहद कठिन संघर्ष लड़ रहे हैं। सफिनाज और सुल्तान 7 बच्चों के माता पिता हैं। पहले सफिनाज रोटियां बेचती थी और सुल्तान टैक्सी चालक थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन सम्मानजनक। फिर एक सड़क दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज सुल्तान काम करने में असमर्थ हैं, वहीं सफिनाज अपने कमजोर लेकिन मजबूत इरादों वाले कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। पति बच्चे और आर्थिक व मानसिक दबाव से भरी जिंदगी।
2: Quand nous payons qu'un affaire, elle là. Si nous avons moyen là, c'est financier, elle là. Nous passons si nos femmes débrouillées. Mon contrôle, c'est pas une société. Un des gens qui que nous viennent aider nous.
1: सुल्तान की विकलांगता पेंशन डॉक्टरों के फैसलों के अनुसार कभी मिलती है कभी रुक जाती है। जीवन यापन और परिवार चलाने के लिए इस दंपत्ति ने सामाजिक रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया है।
3: La madame il a fait application. Il trouvait qu'il nous capable nous bénéficier ça nous tombe de NF.
1: हर महीने नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक अधिकारी उनके घर पहुंचता है निगरानी और सहायता के लिए।
4: Nous discutons avec eux, nous causons avec eux, nous travaillons ensemble avec la famille là. Quand nous réussis, bisanga sa confiance à la famille là. Après sa confiance là. Nous essayons d'amener la famille là vers un niveau un petit peu plus meilleur pour qu'ils soient capables de sortir d'un problème.
1: सोशल रजिस्टर के पीछे एक पूरी व्यवस्था और निर्धारित मापदंड है जो यह तय करते हैं कि कौन सहायता पाने के योग्य है।
5: Critère d'éligibilité, nous avons un seuil de revenu premièrement qui est bien respecté. Pour une personne, c'est environ 3500 roupies qui est capable à jusqu'à 14 650 roupies pour une famille de 3 adultes, 3 enfants.
1: इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 7000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8,50,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। सोशल रजिस्टर के तहत लाभार्थियों के साथ किया गया अनुबंध 2 वर्षों के लिए होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल गरीबी हमेशा दिखाई नहीं देती, कई बार वह 4 दीवारों के भीतर बंद दरवाजों के पीछे खामोशी में जी जाती है।
0: विवरण अशिता रघु का रहा। 3 सालों से हर हफ्ता 3 बार डायलिसिस कर रही एक 16 साल की जवान को नई जिंदगी मिल गई। उसके बड़े भाई ने उसे एक किडनी देकर उसकी जान बचाई। मुर्शन और विदेशी डॉक्टरों की महारत की बदौलत ये सर्जरी हो पाई है। आज बेहतरीन स्थिति में रिनल ट्रांसप्लांट किया जा सका। रोजबेल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में ये पहली बार है ये सर्जरी की गई जो कामयाब रही। और अन्य खबरों में करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई। इसके अफसरों ने पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम

0: दिखाई है। रिज्यूमे अनुसंधानकर्ताओं और इतिहासकारों ने एक सत्र में हिस्सा लिया। इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने ख्याल पेश किए। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इतिहास, विरासत और भारत से आए गिरमित या मजदूरों की कहानी पर जोर दिया गया। दैविक राजकुमार, अशिता रघु।
1: 1834 में भारत से मॉरिशस समय पहले गिरमिटिया मजदूरों का आगमन हुआ था। कुल मिलाकर भारत से हुए गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवासन में लगभग 21 लाख लोग शामिल थे, जिन्हें विभिन्न देशों में भेजा गया था। आज भी इस प्रवासन से जुड़ी शोध और अध्ययन का कार्य लगातार जारी है। करीब 5 लाख गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस आए थे। इससे मॉरिशस उन देशों में से एक बन गया है जहां सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर आए थे। उन्हीं मजदूरों की तरह कई रेनियन टापू, फिजी, गियाना इत्यादि देशों में भेजे गए थे। अतः इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट में जिन समुद्री रास्तों को तय करते हुए वे कहां कहां गए और बसे, इन सब की जानकारी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। हम विभिन्न देशों में बसे डायस्पोरा के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे इस डिजिटल डेटाबेस को सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे शोधकर्ता इन जानकारियों तक पहुंच पाएंगे। इस तरह जो लोग अपने पुरखों का पता लगाना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी। सरकार गिरमिटिया मजदूरों पर शोध के लिए इलाकाई स्तर पर एक उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार आप्रवासी घाट को कार्य जारी रखने में मदद दे रही है, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसे शोध केंद्र का होना आवश्यक है। इसीलिए हम मॉरिशस को आगे ला रहे हैं। मॉरिशस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास गिरमिटिया मजदूरों की 1,75,000 से अधिक पहचान तस्वीरों का एक अनमोल संग्रह सुरक्षित रूप से नेशनल आर्काइव्स में संरक्षित है।
0: मॉरिशस में कीटनाशकों का जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करना अधिकारी मुख्तलिफ साझेदारों के साथ मिलकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हिफाजत करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत इस परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि स्थानीय जरूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखा जा रहा है। इसके अलावा दाम पर असर से बचने के लिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया। दूरदर्शन की रिपोर्ट पर आस्था गोविंद तामन का विवरण।
2: भारतीय सरकार ने कच्ची और सफ़ेद चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है या अगले आदेश तक ये रोक जारी रह सकती है। सरकार के अनुसार देश में चीनी उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। इस वर्ष सरकार को उम्मीद थी कि उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहेगा और इसी आधार पर 15,90,000 टन चीनी निर्यात की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन अब प्रमुख गन्ना उत्पादक सेक्टरों में उत्पादन घटने के संकेत मिले हैं, जिसके कारण लगातार दूसरे वर्ष चीनी उत्पादन घरेलू खपत से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पीछे हटने से ब्राजील और थाईलैंड जैसे देश एशिया और अफ्रीका के बाजारों में अपनी आपूर्ति बढ़ा सकती है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के औपचारिक दौरे पर गए हुए हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया और उनकी शान में हुनागर यानी मिलिट्री हुनागर की भी कतार लगी हुई थी। सब ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे।
2: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य राजकीय स्वागत किया गया। सैन्य सम्मान, लाल कालीन स्वागत और ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन की संयुक्त यात्रा इस मुलाकात के विशेष कूटनीतिक महत्व को दर्शा रही थी। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने बातचीत को सकारात्मक बताया, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के बीच रचनात्मक, रणनीतिक

0: और स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि ताइवान का मुद्दा वार्ता की सबसे संवेदनशील विषयों में रहा। शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान चीन अमेरिकी संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया तो ये खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चाएं हुई। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग भी प्रमुख विषयों में शामिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क, टिम कुक और अन्य अमेरिकी उद्योगपति चीन में व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके साथ आए हैं। विश्लेषकों के अनुसार ये शिखर वार्ता बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनावों के बीच दोनों महाशक्तियों के संबंधों को स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण कोशिश मानी जा रही है।
1: अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया। कई हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे प्रस्तावित किए थे लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है। स्थानीय स्तर पर मुशर्रफ के बच्चों और नौजवानों में ड्रग नोशी चिंताएं बढ़ा रही हैं। उनको इस बुराई के बारे में आगाह कराने के लिए ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने वीडियो बनाने का मुकाबला जारी किया। एमएफडीसी और दूसरे साझेदारों के सहयोग से 15 से 18 साल के नौजवानों को 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा। कैजिनो एम्प्लॉयज यूनियन ने क्यूपिप में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। मकसद मॉरिशस में कैजिनो को लेकर राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री की घोषणा पर टिप्पणी करना रहा। गियों बेल के एक बंगले में रूजबेल की आजसू ने कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकीन को जब्त किया। कल इस बंगले की तलाशी ली गई जिसके मालकिन जयंती देवी झगड़ू हैं। वो फिनिक्स से हैं और पुर्तगाल में रहती हैं। उसकी उम्र 41 साल की है। अभी वो मॉरिशस में है और उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया है। एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। कोकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जा रही है।

आम हालत आज रात से कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: पियालावाल सेंट क्वा में 67 साल के 67 years old कुंवारी चंद्र सासी हवलदार जो सासी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर पियालावाल सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोईले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश में 41 साल की 41 years old श्रीमती जया बिसेसो पैदाइशी नाम चिकोरे जो मीनाक्षी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पति विशाम बिसेसो के घर ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। रॉयल रोड पेलखा सेबास्टोपुल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जगोरू जो जोजों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलखा सेबास्टोपुल से उठाई गई। एवेन्यू मोंगिए बॉम्बू में 75 साल के 75 years old श्री ज्ञानदत्त बिहारी जो ओंगले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दिन के 10 बजे इनके घर एवेन्यू मोंगी बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। लालमाटी में 82 साल के 82 years old श्री शिवनंदन बंजन जो शिव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर बंजन लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडिमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9 AM। शोक में डूबे परिवारों से

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आज की सूचनाएं।
2: लावांछ्य झरना शिवालय, शुक्रवार 15 मई 2026 शाम 6:30 बजे मासिक शिवरात्रि मनाने जा रहा है।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

प्रिय श्रोताओ, रात्रि की इस पावन बेला में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है भजते प्रभु का नाम। मैं हूं दिविना और अगले 30 मिनट तक हम सब प्रभु भक्ति के मधुर रस में डूबेंगे। गुरुवार का दिन है, देवों के गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करते हैं। यह दिन ज्ञान, सद्बुद्धि, श्रद्धा तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो आइए सांसारिक चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए विराम दें तथा प्रभु स्मरण में मन को शांत करें। जब जब मन अशांत हो जाए, जब जीवन राह भुलाए, तब प्रभु नाम का दीप जलाकर मन मंदिर को जगमगाए। और इसी सुंदर भाव के साथ सुनते हैं प्रथम भक्तिमय गीत गणेश वंदना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम। जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते जाते रहते हैं, है ना? परंतु जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। कहा भी गया है, प्रभु के दर पर जो भी आया खाली कोई लौट न पाया। सच्चे मन से जिसने पुकारा उसने हर दुख को दूर कराया। आज की इस पावन रात में हम भगवान विष्णु तथा गुरु बृहस्पति से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी श्रोताओं के जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि प्रदान करें। अब प्रस्तुत है अगला।

रात के इस वक्त आप सुन पा रहे हैं भजे प्रभु का नाम, देवीना है आपके संग, जहां श्रोताओं भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जो हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों तथा हमारे कर्मों में दिखाई दे। मन में सेवा, वाणी में मिठास, आचरण में हो सच्चाई। ऐसी भक्ति जिस घर बस जाए वहां स्वयं प्रभु दे दिखाई। तो प्रतिदिन कुछ पल प्रभु स्मरण के लिए निकाल लिया जाए तो मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। इसी सुंदर भावना के साथ सुनते हैं अगली भक्तिमयी प्रस्तुति।

श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम भजे प्रभु का नाम में एक बार फिर स्वागत करते हैं। गुरुवार का संदेश हमें यही सिखाता है कि ज्ञान तथा विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन से नहीं सम्मान से बड़ा बनो, अहंकार नहीं संस्कार से खरा बनो। प्रभु कृपा जब साथ हो जाए तो जीवन का हर अंधेरा मिट जाए। ईश्वर का नाम एक ऐसी शक्ति है श्रोताओं, जो निराशा में आशा तथा अंधकार में प्रकाश भर देती है।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम भज्य प्रभु का नाम समाप्त होता है। अनुमति लेने का समय आ गया। फिर से हमारी और आपकी एक और मुलाकात होगी बहुत जल्द। हरि नाम का दीप जलाए रखना, मन मंदिर को सजाए रखना, जीवन की हर राह में तुम प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। जय श्री हरि। शुभ रात्रि।

मज़ीद सामीन एक हदीस समात कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी के दिन बंदा कोई ऐसा अमल नहीं करता जो खून बहाने यानी कुर्बानी से ज़्यादा महबूब हो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
0: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: कौन है ये आदमी?
6: जीत बलराज। पिछले 2 साल से ये नासिक जेल में है, कल उसे फांसी होने वाली है, यानी कल हर सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम मिट जाएगा। दुनिया और कानून की नजरों से छिपाकर उसे अपना कारतूस बनाकर हम जगत जोगिया को खत्म कर सकते हैं। जिसे ना जिंदगी से प्यार है ना मौत का डर।
4: शनिवार 16 मई को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कारतूस 1999 की ये मूवी जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई कारतूस। टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
7: खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं, मगर उनको सात खून माफ है सर। आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है।
8: क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं?
9: How dare you talk to my father like that?
8: 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए।
9: आपके लिए आपके सिद्धांत ही सब कुछ है। कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है?
4: शनिवार 16 मई को रात के 9 बजे MBC 3 पर हिंदी फीचर फिल्म आरक्षण 2011 की मूवी आरक्षण। इस फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान। आरक्षण सीधे पॉइंट
0: पे। रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: रात के 9:04 होलबा। ये बखत आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा और किरण के सादर नमस्ते आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा। आज 14 मई है, 14 मई बीवे के दिन। देखते देखते माई के समर्पित ई मई महीना के आधा अंश गुजर गल और आधा महीना बाकी बा। तो चला ई आधा महीना के और ज़्यादा खूबसूरत बनाई जा और बोलल जला जोन विचार जोन बात रात के सोच के सुन के आप नींद में जाइबा तो अगला दिन वो साकार होवेला। तो चला आज अच्छा अच्छा बात, अच्छा अच्छा विचार और संगीत के साथ हमने ये रात्रि के समाप्त करब जा। पहला गाना सुमन राम तोहर के आवाज़ में, बहुत ही मशहूर आप सब कोई के मनपसंद चिमामा।

रात के 9:10 होल बा और 9 बजे से ही आप सबको के फोन कॉल्स आए के शुरू हो गल बा, आपके फरमाइश आए के शुरू हो गल बा। अगला जन गीत चली लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए, लता मंगेशकर के आवाज़ में, उनकर साथ बा तलत महमूद। और ई एगो फिल्मी गाना है लेकिन भोजपुरी गीत, और ई गीत के फरमाइश अक्सर मिलेला। आज ई गीत सुने चाहत हवन विजय बेनी प्रसाद जय शामुनी से हवन, और ई गीत आप अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा, और दूली परिवार मोहताबा से, और ख़ास तौर पर शास्त्री बुनमाली जे आपके दोस्त हवन उनकर नाम। और ई गीत के फरमाइश अक्सर आवेला, अभी हमने के घोंगुब से सुनीता जी भी सुनत हवन। सुनीता जी हमेशा की तरह अपन बहन विमाला के नाम गीत करेलन, विमाला जी कोंगोमा से हवन। तो विमाला जी आपके नाम भी आपके बहन सुनीता की ओर से, और जितना कोई के ई मनपसंद गीत है, जितना कोई ई गीत के मांग करे जा, और आज हम पहला ई गीत चलावत है, तो आप सब कोई के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ।

0: भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में हमार और आपके साथ रही रात के 11 बजे तक। ई बखत आप रेजो मॉरिशस और रेजो मनोरंजन संगे जुड़ल हवा। MBC के ई दोनों चैनल पर हर रात के 9 से 10 बजे तक और फिर 10 से 11 बजे तक पूरा 2 घंटा तक भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आपके पसंद पर चलेला, आपके फरमाइश पर चलेला और आपके फ़ोन कॉल्स जैसे ई कार्यक्रम शुरू होवेला आई के शुरू हो जाला। हमने के फ़ोन नंबर बताए के तक कोनो ज़रूरत बा ही नहीं, लेकिन हमने के एगो व्हाट्सअप नंबर भी बा जहाँ पर सकबा आप मैसेज भेजे। ई व्हाट्सअप मैसेज में आपके फरमाइश के हम ज़रूर चलावब और पढ़ब भी। और हमने के व्हाट्सअप नंबर है 5251700505 5501700005। अगला जो गीत चली बिजमावती संपत के आवाज़ में, ये गीत सुने चाहत हवन दरमिया जी। और दरमिया जी आप हवा मोदालबिया से, मीरा बाई दरमिया आप ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा। और ये बखत जितना कोई हमने के सुनत हवा जा और जितना कोई के घर में गीत गवाए के मौसम चलता, गीत गवाए के जो वातावरण बा वो बंद कर बा, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। गीत गवाए खाली खुशहाली ही के नहीं, बल्कि एगो बहुत ही प्रतीकात्मक एगो रिवाज एगो विधि है जेकर से एगो शादी शुरू होवेला। तो चला ई सुहावन गीत आप सब कोई के नाम मीराबाई दरमिया के फरमाइश पर।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening to RM Free Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:36 होलबा, और आप बहुत प्यार के साथ, बहुत वफादारी के साथ हमके सुनत हवा और बातचीत भी जारी बा हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो गीत चली भाई अब्बू के नाम, भाई अब्बू जे हमेशा हमने के सुनेलन आप सब कोई की तरह, और हमेशा फ़ोन करेलन, और आप सब कोई के एगो खास गीत है, एगो विशेष गीत है जो आपके सबसे मनपसंद है, और वही गीत आप लोग जब कोई सुनी वो गीत जान जयन कि ई इनकर या उनकर पसंद के है। भाई अबू के पस मन पसंद गीत है सब कोई जानेला, एक तो है धोती पोती पगड़ी और दूसरा है छोर के मोरिसवा। छोर के मोरिसवा ये गीत खाली मॉरिशस में जे लोग बा वो लोग ही नहीं, बल्कि ख़ास तौर पर जे लोग मॉरिशस से बाहर हवन जा वो लोग के मनपसंद गीत है। आतिश भगीरथी के आवाज़ में ये बहुत खूबसूरत गीत जेकर में बहुत बड़ा बड़ा बात छुपल बा, मन के छुए होला बात छुपल बा। भाई अबू अफेज असलम आयाज जयर जयरा रईस काला चोटी आपी उनकर दोस्त और उनकर बीवी के नाम करत हवन, और आप में से जितना कोई के भी ये मनपसंद गीत है आप सब कोई के नाम आज के भोजपुरी तड़का में।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ
4: खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं मगर उनको सात खून माफ है सर, आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है।
5: क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं?
6: How dare you talk to my father like that?
7: 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए।
6: आपके लिए आपके सिद्धांत ही सब कुछ है, कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है?
3: शनिवार 16 मई को रात के 9 बजे MBC 3 पर हिंदी फीचर फिल्म आरक्षण, 2011 की मूवी आरक्षण। इस फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान। आरक्षण

रात के 10 बजे में 10 मिनट कमती बा और 11 बजे तक हमने के साथ रही। बहुत सुंदर सुंदर जन आंकड़ा बा हमने के सामने बा, 10 10 और फिर 11। और अभी हमने के सामने 1 घंटा और 10 मिनट बा आपके मनपसंद गीत नोट करे के, चलावे के और ओकर आनंद उठावे के। रात के समय ढेर कोई सफ़र पर हवा जा, ढेर कोई सीमा में हवा जा और बीच सीमा में ये बखत पुलिस भी आपके नज़र आए। ये खातिर आपके चाहिए बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलावे के। जितना सावधानी लेबा उतना सबके सुरक्षा चली, आपके भी दूसरों के भी। और जब बीच सीमा में पुलिस के बात चलेला तो एकर पर एक बहुत सुंदर गीत बनल बा रतन हरि के आवाज़ में। और ये गीत सुने चाहत हवन आंसले ई बखत, तो चला जितना कोई ई बखत सफ़र में हवन जा और हांसले खातिर भी ई सुंदर गीत रतन हरि के आवाज़ में।

ये बखत आप सुनत रहला रतन हरि के आवाज में। बीच सीमा में पुलिस रोके और बिना फिटनेस बिना लाइसेंस के गाड़ी तक चाहे छूबे नहीं करे के। और दू को बात बा, जे आपके पास लाइसेंस नहीं रही तो वो काम नहीं कर जोन काम के लाइसेंस नहीं बा, और जे लाइसेंस रही तो वो लाइसेंस के पूरा पालन कर नहीं तो ओके चाहे लौटा देवे के। और चली जा एगो अगला गीत के ओर बढ़ब जा, सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली। 10 बजता और ये गीत के मांग काफ़ी बुनेरे से कर ले हवन अमृता गणेश पीतों से। और अमृता जी ये गीत अपन पूरा परिवार गणेश परिवार के नाम सोनिया परी के नाम और विशान और पूनम के नाम करत हवन हमेशा की तरह। और चमेली चमेली के ढेर फान बा, ये गीत बहुत कोई के पसंद बा। ये गीत वाकवा के सुदेवी के भी नाम, सुदेवी अक्सर हमने के व्हाट्सएप मैसेज भेजलन और अपन फरमाइश सामने रखेलन। हमेशा की तरह ये गीत आप ललिता दीदी आत्माराम भैया सुनीता शोभा देवीना केशनी कृषय कृषिका जे मालेंगा से हवन जा लक्षिका के नाम करत हवा, साथ में रामरतन परिवार के नाम भी। और आपके साथ साथ ये गीत अनीता जी के नाम भी जे फ्लिक ऑफ लक से हवन। और अनीता जी आप भी अक्सर हमने के मैसेज भेजेला, आप ये गीत अपन बहन शोभा आराधना लक्ष्मी अनुराधा लक्ष्मी के नाम करत हवा। और सब

रंभा राम तोहल के ये बहुत ही मशहूर गीत के बाद अगला गीत भी एगो बहुत ही मशहूर कलाकार के आवाज में, जे आज तक हमने के बीच नहीं हवन, लेकिन उनकर आवाज आज भी हमने के एहसास दिलावेला कि आज भी वो हमनी के बीच ही हवन। और हमने बात कर रहे थे जा विनोद शिवदत्त जी के दगा दिले रे सोनरुआ, ये गीत सुने चाहत हवन रोजिल से साजिद। साजिद हमेशा की तरह अपन दोस्त सरोवर के नाम ये अगला गीत करत हवन। और ये बखत जितना कोई भी ये प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम, और उनकर संगे संगे ये गीत के फरमाइश कर ले हवन बेलिया से आत्माराम जी। आत्माराम जी हमेशा की तरह अपन चार गो बहिन के नाम ये गीत करत हवन, चार गो ऐसन बहिन जोन रेडियो से रेडियो के माध्यम से उन लोग के रिश्ता नाता जुड़ल बा। और ये चार गो बहिन हवन सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी। तो चला ये गीत विनोद शिवदत्त के आवाज़ में दगा दिले रे सोनरुआ, जेकर जेकर भी ये मनपसंद गीत है वो सब कोई के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

निसंगे बस आधा घंटा बचल बा, और ये आधा घंटा में आपके मनपसंद ही एक से बढ़कर एक गीत रखा गल बा। अगला गीत भोजपुरी बॉयज के गावल, भोजपुरी सब कोई के नचेले बा। आजकल नाचे गावे के मौसम चलता, शादी ब्याह के मौसम चलता। अब शादी ब्याह के अलावा

मेल मुलाकात के साल गिरा रही त खुशी मनावे के चाहे हर एगो मौका के फायदा उठावे के। खुशी एगो फैसला है, ऐसे नहीं चाहिए सोचे के कि आज मौसम अच्छा बा तो इ वजह से आज दिल खुश रही, आज सब कोई ठीक से बात करा था तो इ वजह से दिल खुश रही, जी नहीं। खुशी चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति रही तब भी जे आपके संकल्प रही खुश रह के तो आपके मन हमेशा झूमी गावी, हमेशा नाचते रही। और भोजपुरी सब कोई के नचेले बा ई गीत सुने चाहत हवन। मॉरिशस से दूर फ्रांस से शीला और सुरेन, आप दोनों जना अपन सब लड़का के नाम ई गीत करत हवजा। अपन सब भाई बहन भौजाई और नाती पोता सब कोई के नाम, साथ में मॉरिशस में भी जितना कोई भोजपुरी बॉयज़ के शौकीन हवजा, खासकर कुनाल बाबूलाल के आवाज़ के जे प्रेमी हवजा, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

इस वक्त आप सुना था वह रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का। आज बीफे 14 मई के ये रात्रि अब समाप्त हो जाए। थोड़े ही देर में एक घंटा आधा से थोड़ा जस्ती समय में, और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह आपके साथ खातिर, आपके प्यार खातिर, आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेज खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़े घड़ी में हमने के फ़ोन कर लन बॉशरी के धनी जी बॉशरी से हवन। और आजकल ठंड के जो असर बा वो सब कोई के छूले ले बा, सब कोई जाना था कि अब सर्दी के मौसम चला बा और चाहे अब थोड़ा जस्ती ख्याल रखे के और ओढ़े पहने के भी अब जो शैली बा वो भी बदल जाए। जस्ती ओढ़े के चाहे और रात के समय था सब कोई के ठंडा लगता वॉशिंग में और जस्ती ठंडा लगता। और ऐसन में आप सुने चाहता हुआ हमेशा की तरह आपके मनपसंद गीत, जैसे थोड़ा घर ही आगे बोल ली सब कोई के एगो मनपसंद गीत था। और जब ई नाम सुनबा तो वो गीत के भी ख्याल सकबा कर लेवे और वो गीत सुनबा तो आपके ई बात के समझ चलाए कि ई के मंगले हुई। तो चला साथ में सुनी जा फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गर्ल एगो भोजपुरी गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में, जोन सलमान खान और भाग्यश्री पर फिल्म मावल कर रहा।

शारदा सिन्हा के आवाज के बाद अगला जो गीत चली वह विनोद सिद्धत के आवाज में ठेला ठेली, और ये गीत सुने चाहा था वन सूरी नाम से बल्कि सुयाक से श्रीमती जी अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत करा था वन तीन गो बेटा बेटी और नाती पोता के नाम, और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह, और रात के 11 बजे तक हमने के साथ देवा था वजह।

आप सबको के नाम ये अगला गीत बहुत बहुत शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब और दुगो गीत चली आप खातिर एकता किशोर खिमिया के आवाज़ में जलसा लालबा और फिर पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में पिया परदेस। तो हमने की मुलाकात कल फजर के फिर से हुई और नहीं तो आवत बीफे के फिर से मिलब जा भोजपुरी तड़का में और अभी से आवत बीफे तक हमने के मुलाकात जब तक फ़ोन पर नहीं हुई अपन ख्याल रखिया जेकर घर में खुशी के मौका बा खुशी के खूब आनंद उठावा और जिंदगी के हर एक पल के खुशहाली मनावा। हमने के साथ हैजे तक रहल आज के रात आपके शुभ रात्रि नमस्ते।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
3: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। आ गई हूँ बिल्कुल जी फिर से वापस इस खूबसूरत से सफर में आपका हम सफर बनने के लिए। तो बस आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए। ऐसे खूबसूरत नगमे हम लेकर आई हैं चुन चुन कर, खास कर आपका दिल बहलाने के लिए, आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए। तो ये रहा अगला नगमा आपके नाम।

वैसे दोस्तों जब लव्स कम पड़ जाते हैं तब पुराने गाने दिल की बात कह देते हैं। रेडियो मॉरिशस पर सुनिए सुनहरे पल, एक ऐसी महफिल जहां हर मेलोडी में बसी होगी यादें और सिर्फ मोहब्बत।

आंखें बंद कर लीजिए मेरी जान और खुद को ले जाइए उस खूबसूरत दौर में जहां रेडियो रेडियो पर बजते थे दिल को छू लेने वाले गीत सुनहरे पर सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला नगमा हम लेकर आए हैं स्पेशली उन तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े ही प्यार से बैठे और अपने मीठी मीठी यादों में खो चुके हैं।

पुराने गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, जिंदगी के वो पल होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं दोस्त। तो जुड़िए रहे हमारे साथ और महसूस कीजिए उन्हीं सुनहरे लम्हों को सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। और ये पल काफी यादगार रहेगा क्योंकि फिलहाल के लिए हम आपकी यादों को चीरने वाले हैं।

एक प्यारी सी शाम, एक कप चाय, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ दोस्तों, सच अ लवली कॉम्बिनेशन, पुराने गाने, पुरानी यादें और एक कप चाय, और साथ में पुराने बॉलीवुड के अमर गीत। वाह, बस इसी खूबसूरत एहसास का नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

वो दौर ही कुछ और था मेरे दोस्त, जब गाने सिर्फ सुनने नहीं दिल में उतर जाते थे। मानो या ना मानो, हर सिचुएशन के लिए एक गाना तो फिट होता है ना, और बॉलीवुड ने हर एक इंसान के लाइफ के सिचुएशन के ऊपर एक ऐसा गाना ज़रूर निकाला है कि बस सुनते ही आपको वो लम्हे वो पल याद आ जाए। आज फिर वही एहसास लेकर आई हूँ मैं सुनहरे पल में, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे देखा जाए कुछ आवाजें कभी नहीं भूलती ये दुनिया। रफी साहब, मुकेश दा, लता जी, किशोर दा और कितने सारे हमारे बहुत ही महान कलाकार हैं, उन्हीं लेजेंड्स को हम याद करते हैं जब भी हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे इन यो सुनहरे पल। बिल्कुल जी, उन्हीं लेजेंड्स के अमर गीतों के साथ सजती हैं हमारी ये खूबसूरत सी महफिल सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

क्या बताऊं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: Ha ha ha!

0: मियां सालार जमात मिसराए हुला की नकवा संजी में मशरूफ मशगूल हैं, ता वक्ते के दीगर असहाबे जमात मिसराए सानी के बकिया अरकान की अदायगी फरमा रहे हैं। आए
1: ये क्या गालिब की गजल है।

कोई शख्स आम, तुझे में बसा है अल्लाह, तुझे में है राम। इंसान है इंसानियत की खूबियां तुझ में तमाम, ऐ बंदे इस जहां में कुछ खास है तेरा काम।